Cosumita, drumada la jovini, suhasini, sumadura mashini.

ये आकाशवाणी का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। इस समय दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी आज की पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। इस समय दिन के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: तुम धड़कन की धुनती यही याद है।
1: दो दिल मिलेंगे ये उनके मिलन की।

के तो देखो इनमें है तस्वीर तेरी, ओ नैनो से नैना मिला के तो देखो इनमें है तस्वीर।

0: diz que a mangueira correr.
1: और आइए अब सुनते हैं तुम हो साजन मेरे फिल्म का गीत।

0: कारी कारी अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर, चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहाँ थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम चमक झुम झुम चमक झुम झुम
1: कारी कारी कारी अंधियारी की रात, एक दिन की

साना साना ना पावन चले झनना झनना झांझर बोले अमृत घोले दिल न डोले कामिनिया चले हौले हौले नयन झुके पग न रुके बेला मिलन की न टले अचरा ढले दीपक जले पिया मिलन गोरी चले झुम झुम झुम झमक झमक झुम झुम झुम झमक झमक झुम झुम झुम झमक झमक।

गिरे बरसात, उठे घन घोर घटा करे शोर पपिया। पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ, कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपिया। सन में लगन लगी मन में अगन जगी, बंद किए दोना नैना उभारे। प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे, चली है वो सांसों की डोर सहारे। छुम छक छक झुम झक छक, छुम छक छक झुम झक छक।

से नारी चली है वो सासों की धुर सहारी, धुर सहारी, चल छक छक झूम छक छक।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए अब सुनते हैं NCERT का कार्यक्रम उमंग।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
3: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
3: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
3: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
3: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
3: सप्रेम

0: नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना, पक्षियों को दाना खिलाना, डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है।
0: जी,
1: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है।
0: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है, वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी, अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा?
0: अजीत जी, इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे।
1: जी
0: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह। इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानू यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है।
1: जी हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
0: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौधे लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
0: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे
0: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
0: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
0: जापान का चाय समारोह 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है
1: वाह यानी
0: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
0: दूसरा शब्द है केई
1: जी,
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है से यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
0: श्रोताओ, इन 4 सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चाशित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर यह चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर

0: से सुन लीजिए।
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
1: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ, पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो ये पीढ़ी सरकार, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी? अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
1: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
2: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
1: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
2: लो।
1: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
2: और हाँ।
3: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
2: कहाँ बड़ी बहुरिया?
3: मेरी माँ के पास।
2: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
3: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
2: बड़ी बहुरिया,

हर गोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी।

0: आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहू, भैया राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा चलता हूँ।
0: अच्छा
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।
1: भाई साहब,
3: हाँ
1: थाना भीमपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
3: अरे भैया थाना भीमपुर में सभी गाड़ियां रुकती है।
1: अच्छा, अच्छा
3: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
1: अच्छा,
3: हाँ, घबराओ मत, बता दूंगा।
1: तो कितना समय और लगेगा?
3: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
2: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो पाया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा? बड़ी बहुरिया के संवाद रह रहकर उसके कानों में गूंज रहे थे।
0: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
1: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
2: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
1: पाए लागू माँ जी।
4: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
1: जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
4: मेरी बेटी का कोई संवाद?
1: संवाद जी, संवाद तो कोई नहीं।
4: हा?
1: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लो।
4: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
1: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
4: सो तो है।

0: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
1: अरे हर गोविंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है, टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी।
1: हाँ सो तो है, चलो अच्छा है। अब बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
0: अच्छा अच्छा माँ जी।
1: अरे हर गोविंद, क्या सोच रहे हो, कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हर गोविंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी पापड़ अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोविंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हर गोविंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी थी। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
0: माँ जी अब आज्ञा दीजिए।
1: अरे
0: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी अब पाए लागू।
1: जीते रहो बेटा,
0: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
0: अरे भैया जी आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
0: अच्छा राम राम
3: राम राम
0: राम, राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब दे?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक कही है, जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो, शाबाश शाबाश शाबाश। अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संभाल न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई तुम
2: मैं हम निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना, नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, यहीं रहूंगी।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजंस कवर्ड विद फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट अ डेजर्ट इज रियली लाइक। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स and therefore no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow.

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की आज से इंदौर में शुरुआत हुई। इस सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य

0: उनको होगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज राष्ट्रव्यापी समारोह आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस बीच प्रदेश में भी आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे गए हैं। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में महिलाओं के लिए निःशुल्क जांच शिविर लगाए गए हैं। साथ ही स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीग जिले के प्रवास पर हैं। उन्होंने आज डीग स्थित श्रीनाथ जी मंदिर प्रांगण में धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। श्री शर्मा कल डीग पहुंचे थे। उनके साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद हैं। राज्य के पश्चिमी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का असर बढ़ गया है। दिन के समय सूरज की तपिश और गर्म हवाएं जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। राजधानी जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जालौर, सीकर, झुंझुनू में पारा 40 डिग्री पर रिकॉर्ड हुआ। कल 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर में सबसे गर्म दिन रहा। वहीं फलौदी में 44.8, जैसलमेर और बीकानेर में 44.44, चूरू में 43.5 और बाड़मेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं आज कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाकर 43 दिन कर दी गई है। पहले ये 17 मई से 20 जून तक 35 दिनों की थी। आदेश के अनुसार संस्था प्रधान की ओर से एक अवकाश के स्थान पर अब 2 दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय 1:05 हुए हैं। अब बहनों के लिए प्रस्तुत कार्यक्रम मणिहारी।

0: बढ़ियारी कार्यक्रम सुनने वाली सगड़ी सखियों ने सगले श्रोताओं ने रेडियो सखी गुंजन और साथ ही तृप्ति बहन थोने भी म्याड़ा घना घना राम राम
1: राम राम गुंजन बहन। शुरुआत आपो करी रोम रे नोम सो और थोने आता स्कूल टाइम आओ पढ़ता तो कोरी कॉपी में लिखता पहला पन्ना राम का दूजा पन्ना काम का। तो शुरुआत इतनी कोई बातों करोड़ी हो जो कितने साल बाद आपो दोहरा जी अलग रूप में
0: कितना भी साल हो जावे लेकिन कुछ चीजों दिमाग में जहन में ऐ जड़ जा रहे जावे
1: रह जावे बस जावे
0: जो चीजों जो बचपन रे रहया करे नहीं क्योंकि बचपन आपो रेडो रेवे के जो जो घड़े जा आपो घड़ी सा जावे खुद घड़ी सा जावे। तो अगर कोई अध्यापक आपन अच्छी चीज सिखाई दो आपरे दिमाग में बैठ गई कदे कोई एडी भी चीज रही हो जो आपन नहीं भी पसंद आई लेकिन वो नहीं पसंद आने कारण भी आपरे दिमाग में रह गई बात। तो बचपन की बात ऐडी वे कि वो अपन जिके तरीके से घड़ाया जावे जिके तरीके से बताया जावे वो अपने दिमाग में रह जावे। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो समय ऐड हो तो कि आपो जब स्कूल पढ़ता था तो अगर कभी अध्यापक अपन कुछ गलत भी पढ़ायो तो अपने दिमाग में एक बात रहती थी कि नहीं टीचर बताए तो यही सही है
1: आपो टीचर ला रहे पेरेंट्स लड़ लेता था।
0: हाँ
1: थोनो को मारे मैडम है बात
0: मारे टीचर
1: थोनो को नीटा
0: मतलब ये सब सिद्ध होता था कि टीचरों के प्रति
1: श्रद्धा
0: श्रद्धा और आदर को तो ज्यादा होते।
1: और अगर कभी आप रस्ते में जा जाए और टीचर अपनो सोमो आए गए और आप कोई कारण से हाथ कौन जुड़ पाया तो अगले दिन डर लगता था कि वो की कैसे कि बच्चे नमस्ते नहीं करते
0: मन में ग्लानी भाव
1: ग्लानी भाव कि और आप ये बात ला रहे रात रहा मोहे मोहे खाइस था कि वो सुबह की कैसे खेत की कह नहीं देवे जबकि हो सके सोमले इन सोने बारे में नहीं ध्यान दी हुए पर आपों ने मोस बहुत डर लगता तो और अपनों के दिखता अब खड़ा हो जाता कि टीचर आया है।
0: साथ ही तृप्ति बहन एक और बात भी थी कि टीचर सु भय भी तो आदर भी तो मारो लेकिन मन में एक संतुष्टि भी होती थी कि अरे वाह आज उन्होंने अध्यापक देखिया मतलब एक वो जो को आकर्षण रहा करे नी अध्यापकों के प्रति वो भी एक तो वो समय
1: और आपको जाए कब था कोई सही नौ दिन था
0: आज मैं उन्होंने जो
1: और बिना हो रहा है अंता वो रहा है ये रंगली ड्रेस पर उड़ी थी क्योंकि आपको रे वास्ते वो एक
0: मतलब भगवान रूप तो मैं आ
1: कौतूहल भगवान श्रद्धेय। और बीची बात है कि घड़ी बार को टीचर में रीस भी आती थी देखो कूड़ में धूड़ है सच में सार है ठीक है रीस भी आती कि यो कह दियो मोजी एक पहले नहीं बचपन में इंसल्ट बड़ो होता था कि मोरी इंसल्ट हो गई है मोरी बेइज्जती हो गई है जबकि एड़ो कुछ भी गुनी वे पर बहुत लगतो के टीचर के दो ये लड़की अरे मोजे फ्रेंड्स हो इंसल्ट हो गई और ए असली तो रह कट्ठा पड़ी जो तब वो कॉलेज लाइफ में जा नहीं तो अपन कोई कवन आड़े को नहीं वे आया कि नहीं आया कि गया और जो को टीचर्स वे वो कदे पेरेंट्स न जाए थोड़ा उड़वा को नहीं देवे तो वो टाइम वास्तव में बहुत अटपटो लगे के मोनो को टोकन आड़ो को नहीं
0: असल में स्कूल में तो वो जाए
1: वो टाइम था पड़े कि कोई कुछ नहीं को नहीं करतो
0: महत्व की है स्कूली वैल्यू की है हाँ। पर उसको बचपन नो दिन क्यों हमेशा याद किया जावे कि बचपन ना दिन तो बचपन ना था वो सब कुछ स्कूल से तो जुड़ा
1: है
0: सारी चीजों वे समय में वे बाहर निकलने बाद में बहुत ज्यादा एहसास हो जावे। और सबसे बढ़िया बात स्कूल विद्यालय यह रहा करे कि वो में कोई तरीके का भेदभाव बने रहे
1: बिल्कुल
0: विद्यालय में जब आप स्कूल जावे नहीं तो सब एक ही
1: गणवेश
0: एक तरह री गणवेश एक तरह रो रहन सहन कोई तरीके री फैशन ना आप घर में कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब हो लेकिन स्कूल में सारा एक सरीका तो कदे मन में भाव को नहीं आता लेकिन एक चीज है आपको जब
1: कॉलेज में जाए तो लगे कि अरे मन तो हर चौथे दिन कपड़ा चेंज करना पड़े पूरे नई फैशन ड्रेस कितनी बढ़िया है वो तो रोज बाल खुला रखा वे मौजे मत्थों को दौड़ो कुल मिला कि जो डिस्ट्रेक्शन है जो को पढ़ाई रे अलावा जो को चीजों है वे सबरी और ध्यान जावे। और देखो गुंजन बहन कॉलेज लाइफ ये वास्ते जरूरी है एक कहावत है नहीं विदाउट कॉलेज नो नॉलेज क्योंकि आपने पूरी जिंदगी गणवेश में और टेलरी चोटियों बनाए को नहीं रवना क्योंकि आप और स्कूलिंग कितनी हो सर 17 साल 16 17 18 साल और की 19 साल आखिर अगर एक एवरेज इंसान या 100 साल में नहीं जावे हमें अलग बात है कि इंसान 100 जीवे कि 70 जीवे कि 60 जीवे आप एक औसत आयु मान जाए ठीक है
0: मायने
1: तो 20 साल आपको जो गुजारी है और 80 साल जो गुजारना है तो उरे बारे में विषय को तैयारी तो होनी चाहिए तो उरे अलावा जो को घर री बातों गृहस्थ री बातों परिवार री बातों समाज री बातों एक कुशल गृहिणी कुशल नारी नागरिक एक परिवार री निवासी और परिवार री बहु बिना एक सामाजिक प्राणी की वे

0: जो समाज से जुड़ो वे समाज उनो प्रभावित करे और वो खुद भी समाज नो प्रेरणा देवे तो ये वास्ते ए भी लाइफ रफ एक जो फेज वे पड़ाव है वो जरूरी है ताकि ते पढ़ाई रे साथ साथ आत्मनिर्भर बनो। देखो कुछ बहन आइडिया हो जिसको कि बिहार के बाद भी पढ़ाई लिखाई जारी रखे तो अगर स्कूलिंग करते हो सीधा प्राइवेट पढ़ाई करे तो उन बड़ी मुश्किल भी क्योंकि स्कूल में आप बार बार टोकी हो जावे के पढ़ाई क्यों कौन करी क्लास में क्यों कौन आया ए क्यों कौन की छुट्टियों क्यों ली। लेकिन कॉलेज में आप ओपन पढ़ाई में कोई तो ना टोको नाड़ो को नहीं है तो कॉलेज लाइफ जो भी आप खुद रो महत्व है थोड़ी स्कूलिंग है ए को नहीं टीचर थोड़ा बिल्कुल छोड़ देवे कवे भी है पर बहुत ज्यादा को नहीं कवे थोड़ा पगों में खड़ो भी होना सिखावे आपका फैसला स्वयं लेना सिखावे आप भलो बुरो भी ते खुद कर सको ई वास्ते मोर टोका टोकी कुछ कम हो जावे।
1: तो देखो द्रुपति बहन ये बात सो ये जीवन सो अपन सीख मिले कि सब कुछ एक जड़ों को नहीं रहा है
0: जी
1: धीरे धीरे ये में परिवर्तन जिंदगी में आवता रहे
0: जी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो
1: समय रे साथ में हर चीज में बदलाव जरूरी है। एक इस तरह रो अगर आप जीवन जीसो तो जीवन नीरस हो जासे
0: वे
1: जीवन में बदलाव बेहद जरूरी है क्योंकि जब बदलाव हो जद अपन भूतकाली और भविष्य काल में तुलनात्मक अध्ययन आवे अपन समझ में आवे कि कई चीज रो महत्व की है और आगे आने वाली कई चीज रो की महत्व हो से
0: जी।
1: अगर आप सिर्फ आप स्कूली दिनों ने समझ लो तो अपन समझ में आ जासे क्योंकि एक इस तरह की शिक्षा अगर आप स्कूल नहीं लेता रहे तो आपको कभी उच्च शिक्षा हासिल करी कौन पाओ
0: और आप
1: उच्च शिक्षा
0: पर भी कौन बढ़
1: हाँ उच्च शिक्षा नहीं ले सो तो करियर मार्गदर्शन कभी आप नहीं मिले आगे गृहस्थ जीवन में प्रवेश जो करना है वे सु संबंधित आप जानकारी कौन मिले। तृप्ति बहन आपको तो भेड़ा पड़े हो आपने तो अध्यापक भी एक जड़ा मिलिया और कई अड़ी चीजों ने जो थोड़ा शायद जहन में याद भी हो सर और एक अध्यापिका आपने कहो तो गृहस्थ की बात बताऊ कि गृहस्थ में जाने बाद में भी आप व्यवहार नो खेड़ो रखनो ईर प्रति हूँ एक बात बताई थी कि कदे भी थोड़ा गुस्सो आवे तो गुस्से में एड़ो काम करो जिके सु कुछ अच्छो हो गुस्से में कदे एड़ो काम मत करो जिके सु थोड़ो ही नुकसान हो तो कुछ लोगों की आदत में गुस्से में तोड़ फोड़ कर देवनी हाथ में जो चीज आई फेंक देवनी जोर जोर से दरवाजा पटकना मतलब जो भी एड़ो काम जो भी कर सो वैसे आप घर नुकसान हो अगर फोन फेंकी हो तो भी आप नुकसान है दरवाजा तोड़िया तो भी आप नुकसान है कोई चीज रो ऊंचो नीचो करियो या जोर से दबायो या गुस्से में और भी कोई तरीके रख लिया गलत
0: क्रोध में की गई गलतियों के लिए शांत भाव पर रोना पड़ता है।
1: देखो कितनी अच्छी बात है तो ऐ चीज वो आपने सिखाई थी कि जब भी गुस्सा आवे तो मन में एक धारणा कर लो कि मन ऐ काम करना है गुस्से में तो
0: जो कपड़ा धोना है
1: जो कपड़ा धोना है बर्तन धोना है प्रेस करनी है या बुक्स पढ़नी है या संगीत सुनना है तो ऐसा की हो से कि आप ध्यान हटा से गुस्से से ध्यान हटाए के अपन शांत माहौल की तरफ ले जा से तो ए अपन सीख वो सु मिली थी वो अध्यापिका से मिली थी। तो जीवन में अच्छा बुरा अनुभव अपन मिलता रहे लेकिन सब कुछ धीरे धीरे होता रहे और धीरे धीरे अपन जिंदगी में चढ़ते चढ़ते कई चीजों रो मोल समझ में आवे कई चीजों रो वैल्यू समझ में आवे और धीरे धीरे खुद धैर्य से जब आगे जिंदगी में बढ़ता रह सो तो अपन सब कुछ सब चीज सही समय में मिलती रहसे। लेकिन अगर आप उतावला होगी कह सो कि जो नमी में बड़ा फिर सीधी बारहवीं में पहुंच जाओ तो यह संभव को नहीं।
0: काफी लोग चीज करे कि भी नमी छोड़ दसवीं करी ग्यारहवीं छोड़ बारहवीं करी ठीक है और आपका थॉट प्रोसेस है वास्तविकता की है कि अगर थे एक पटाखे ने छोड़ छोड़ और डाकन भी कोशिश कर सो तो कदे ना कदे तो भगसो
1: गिरन ना चांस
0: और उवे पढ़ा जावे बढ़ जावे प्लस उवे पढ़ा के जो को सुंदरता है जो को ना तो छोड़ दियो और अनुभव ते कौकर कर सो जब तो जो को बात की मेरी लाइन पूरी कराए कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माड़ी सीचे सौ घड़ा ऋतु आवे फल होए और धैर्य जो स्कूल री शिक्षा रो मुख्य बिंदु है थोने याद भी तो आपको देखो गवर्नमेंट स्कूल हती जिके मैं 70-80 बच्चा होता था एक क्लास में 70-75 होना कोई बहुत बड़ी बात को नहीं थी। वो मैं जब होती थी मौखिक परीक्षा और वो पहले बच्चे से शुरुआत होती थी तो मौजो तो नौ भी तृप्ति है तो मोरे तो टी ला रहा हो तो टी के बारे में यू और भी एक जनों कदे हो तो मैं कद नंबर आवे और टी के बाद भी आ तृप्ति आर तो म्याड़े ला रहे तो टी नौ कदे कोई होते ही को नहीं तो हमें कद मौखिक परीक्षा आवे इंसान 2 घंटे की करे 2 घंटे बाद एक काम कर तो कि जो परीक्षा दे पूछो तो ना की पूछियो तो और टेंशन और लेवल बढ़ जाओ तो अरे पूछियो तो ऐ भी धैर्य अपने स्कूली पढ़ाई सिखावे कि भाई थोड़ा 2 घंटा कुछ भी को नहीं करना પર તને ઇમોશન્સ નો કંટ્રોલ મે કરના હે આજકાલ ફાસ્ટ ચીજ નો જમાનો હે લોગ યુટ્યુબ પર વિડિયો છોટ શોર્ટ્સ દેખે ઓન હર ચીજ ફાસ્ટ જાય છે બચ્ચા વિડિયો દેખે ઓનલાઈન તને ફાસ્ટ ફોરવર્ડ કર દેખે ઓર ખાનો મને ફાસ્ટ ફૂડ જાય છે ફટાફટ વે તો એજ કો તક્કડ હે ની એજ આજકાલ રે જીવન મે થોડી બહોત સારી પ્રોબ્લેમ્સ રિજડ હે ક્યુકે ધૈર્ય ખાવન સુ ભી ગાયબ હે ચલન સુ ભી જાય ગાયબ હે ઓર મનોરંજન સુ ભી ગાયબ હે 50 ઓવર મેચ 2020 ઓર જીકે મે ઘરી વટી 10 ભી આઈ ગયે 10 ઓવર મેચ કોમ ફટાફટ વે ધીરે ની વે તો ધૈર્ય જીવન સુગર જાસે નહીં
1: લેકિન તૃપ્તિ બેન એક ઓર ચીજ બતાઉં ભલે કિતની ભી ફાસ્ટ જિંદગી હોય જાવે આના થજો T20 મેચ રીચ વાત કરી T20 મેચ મે અગર કોઈ સિતારા બન ભી ગયા ને તો ભી આખિર મે પરીક્ષા રે વાસ્તે મોનો કી કયો જાવે કે મોરી અસલી પરીક્ષા જલ્દી જાય ભલે કેટલા સુપરસ્ટાર બન જાવે અસલી પરીક્ષા હોય ખેલાડી ની ટેસ્ટ મેચ ખેલણ સુ આવ્યા કરે ટેસ્ટ મેચ મે જકે ધૈર્યતા સુ જકે ગંભીરતા સુ બોલર સામનો કરનો પડે બેટિંગ કરની પડે પિચ મથે જમ કે રમણો પડે ઓ જકો મોરી પર્સનાલિટી હોય જગા મથે અસલી મે દેખાઈ દેવે તો એ વાત સુ આપણને સમજ મે આવે કે ધૈર્ય રો જીવન મે તો બડો મહત્વ હે ભલે ફાસ્ટ આપો ખિતાબ હો જાઉં સુપર ફાસ્ટ નીકળ જાઉં લેકિન આખિર મે ધૈર્ય રે સાથ મે કિયો ગયો કોમ એજ આપરી વેલ્યુ બધાવે ઓર ઉએ ધૈર્ય રો ઇજ મન આપર વ્યક્તિત્વ મે ભી દેખાઈ દેવે ધૈર્ય સુ વ્યક્તિ રી ઝલક હોય ધૈર્ય સુ રી પર્સનાલિટી ના આપી જવે ઓર આપો એ ભી સુણીએ રૂપતિબેન કે હેક અચ્છો વક્તા બનને વાસ્તે સબસુ પહેલે હેક અચ્છો શ્રોતા બનવો પડે યાની કે કિતે ધૈર્ય સુ કિતે લોકો ને જદ આપો સુનસો જદ આપો આપણે કેટલી સારી ભાવનાઓનો નિકાલ કે એક અચ્છા વક્તા બન પાસે તો એ વાસ્તે ધૈર્ય જિંદગીમાં બહુ જરૂરી હોય ધીરે ધીરે રે મના આપો સખ્યનો વેજ કહેશો કે સબ કુછ હોય માલી સીચે સો ગળા જદ સમય આવે જદ આપણને સબ કુછ સહી મિલ જાય કરે લેકિન એ વાસ્તે ખુદનો સંભાળ કે રખણો હે સહેમ કે રખણો હે ઓર આપ આપ આપ દિમાગ મેં જો અશાંતિ હે એને શાંત કરકે રખણા તાકે આપણો મન સ્થિર રહેશે તો આપણને સબ કુછ જિંદગીમાં મિલ શકે અશાંત મન કલેશરો કારણ બનશે લેકિન શાંત મન હજારો સુખોરો કારણ બન શકે તો એ સાથ તૃપ્તિબેન લંબી ચર્ચા રે સાથ સખ્યનો સુણાશો કુછ જરૂરી સંદેશ ઓર બાદ સુણાશો એક મીઠો મધુર ગીત
0: જી
2: के पैसे मिलेंगे
3: सो इजी
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आवाज ये जाए हर घर अपनी गणना करवाए मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार गुंजन बहन, थोड़ी फरमाइश मत है, थोड़ी सिफारिश मत है, बढ़िया गीत सुनवाए दियो बहनानो। आप और राजस्थानी घूमर और गुंजन बहन जद राजस्थान री जैसलमेर री परंपराओं री बात कर जे नी तो वो बात एक शब्द तक खत्म को नहीं वे, एक पूरा पुलिंदो खुलतो जावे। एदरी भाषा, एदरी संस्कृति और कहनो कहड़ो लगे अपनो देश अपनो को नहीं ठा। पर आप जब के बाहर सुझाया जनी जनो बाहर गई थी तो ठा पड़ी तो कि जैसलमेर कितो सुंदर है, क्योंकि बाहर लाजको भाठा भी नहीं और मोए सुंदरता में घनी खोजी, पर वो सब में आर्टिफिशियल सुंदरता थी कि बाहर सो घरों दीवारों सुंदर सुंदर बनाए अच्छो रंग रोगन करोड़ा था। पर आप देश में जो बिखरोड़ा भाठा है नी, मुन्ना तो लोग सोनेरी धूड़ सोनेरा भाठा एक वे नहीं के शेड्स आप देख जाए शेड कार्ड्स आवे गहरो गुलाबी विसु हल्को तो जब बाहर सो 14-15 दिन बाद जब जैसलमेर आई तो मुन्ना इतने परिसर में आते लगी हो कि सोनेरा शेड है, यानी सुनहरी मिट्टी है, सुनहरी धूप है, सुनहरी हवा है, सुनहरा पत्थर है, तो सब गोल्डन है, सब शेड है।
3: असल में तृप्ति बहन सुंदरता तो अपने शहर में शुरुआत सुई है, लेकिन की है कि जिके सुंदरता ना आपो रोज देखो है नी तो आपो रे वास्ते वो अंखियां अभ्यस्त हो जावे, लेकिन वही जे जद कोई और आए कि वनो वो कदे देखी को नहीं अड़ी सुंदरता तो वो मुंडे सो वाह निकलना स्वाभाविक है, क्योंकि वो अड़ी कदे देखी को नहीं। वहाँ प्राकृतिक सुंदरता जो को एतले बाठा में है वो तो वो ना लगे कि कदे वो ना मतलब जिंदगी में वो ना कदे मिली गुण में जिक्र वास्ते वो ये था होते वाह मुंडे सो निकले। तो ए जीवन में भी एक फलसफो है कि जब आप सुंदरता ना बहुत ज्यादा देख लो तो आप वास्ते वो नॉर्मल चीज है।
2: दो भी है ना, अति परिचय ते होत है अरुचि अनादर आए, कभी बंद्र दो है, अति परिचय ते होत है अरुचि अनादर आए, मले गिरे की भीलनी चंदन देश जलाए,
3: बस
2: मले पर्वत में जो भीलनी हो रही ओ तो वास्ते बाड़े तो चंदन री लकड़ी और बाड़े की तो देख लियो कि वो नवरी को कदरी
3: कदरी कोनी है। इस बात है कि तो आप और वास्ते भी जद आप इस बाहर निकले तो अपना समझ भाई कि असल में अपने जैसा आंडी है अपने इतनी मिट्टी री अपने इतनी बाठोरी कितनी कीमत है। तो ये साथ ही एक अपने जो राज्य रो कल्चर है नी संस्कृति है नी पूरे देश में मने समझन में मिली है कि पूरे देश में जब राजस्थान नो नाम आवे नी तो राजस्थान ने नाम माथे लोगों रे जहन में जो मिट्टी रा धोरा
2: जी
3: ओ झोपड़ी ग्रामीण ओ घूंघट निकालोड़ी औरतों और ओ आंगड़े में आंगन नीपती लुगाया बाहर दरवाजा सजावती
2: मोंडना बनावती
3: और मिट्टी रे बर्तनों में
2: काम करती हूँ कलाकारी
3: तो
2: करती
3: हूँ एक जहन में लोगों ने अपनी आप बड़ी छवि आप गोवा रो नाम सुनो या केरल रो नाम सुनो तो नारियल का पेड़ और हरी भरी जगह पर दिमाग में जो ओतले लोगों ने दिमाग में अपने प्राण वास्ते ऐ चीजों दिमाग
2: ऐ चीजों जावे और मनो की लक्ष्य अगर एक थोने फोटो बताए दो नी जिके हमको लुगाई है और मिट्टी रे बर्तनों से चुल्लो जो फूके पे तो कैसे राजस्थान है नहीं तो और ऐ जो थे देखो मिट्टी राज को बर्तन है नी कम चीज को नहीं संस्कृति तो है और ये महत्व देखो कितना ज्यादा है क्योंकि आध्यात्मिक लहजे में देखियो जावे नी तो आप मिट्टी से बढ़िया हो और आपने मिट्टी में मिलना है
3: सही है।
2: तो अगर आप सो खुद सो जरूरी चीजों रे मौज जे इर्द गिर्द जीवन बिता जे तो वो चीज आप शरीर है नी स्वीकार जल्दी करे। जो अगर कोई ऐडे प्रदेश रा निवासी है जो कि जलीय प्रदेश रा है जो को आस पास समुद्र लगे तो थे देखो कि वो रे भोजन रो मछली अनिवार्य अंग वे ठंडा तो गीत भी है
3: भाई
2: मछली है सागर का मेवा ये गीत में भी आवे तो उमज उमरी संस्कृति उमरे खुदरे मोए ओ जल विद्यमान है और वे जल रे मोए ओ तो उमरे आपन देखी जे नहीं देखी जे लेकिन वो जल मोरे घरों में मोरे जीवन में केत लगे पहुंच जावे आपोरे मोए जे धूड़ा उड़ता रहे है नी गर्मी बहुत पड़े और गर्मी शांत कद वे जे धूल भरी आंधी ओढ़े
3: तो एक फिल्म रो डायलॉग भी है नी के यहां आदमी साला ना चाहते हुए भी दर्जन भर 1.5 किलो 1.5 किलो

0: किलोमीटर यूं ही खा जाता
1: यूं ही खा जाता है
0: क्योंकि अपना शरीर एब्जॉर्ब करे भी
1: अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल सर्वथा स्वीकार करे।
0: मिट्टी अपने वास्ते तो सबसे बढ़िया चीज है, मिट्टी में अपना टबर खेले नहीं तो भी मजबूत हुई
1: बिल्कुल रज कण।
0: हाँ।
1: और आप तो कवे नहीं के जो टबर छोटो टबर वे खेलता कुत्ता लग जावे या कोई डोंडा जो पाले लग जावे नहीं तो उसका मिट्टी लेप देवे धूड़ ना लगाए देवे धूल लगाए लगाई को नहीं वे
0: तो मिट्टी एक अवशोषक रो काम करे और वो दर्द ना खेचे और भी जो को शरीर में रोग भी ना और ये तो हमें थेरेपी बन गई है
1: मड थेरेपी बन गई
0: है ये तो थेरेपी बन गई है। तो मिट्टी में तो वो ताकत है तो वो ताकत अपने बर्तनों में क्यों बनो इसके बर्तनों में तो और ज्यादा बढ़िया।
1: सही बात है सही बात है। कितना भी थे फैंसी बर्तन देख लो थे देखो जितना भी प्रकार बर्तन आवे नहीं सबसे शुद्ध बर्तन क्या ना कहो जावे कांच क्योंकि कांच जब टूट जावे नहीं तो थे वो स्वरूप में पचो भेड़ो करे को नहीं पाओ कोई ना कोई टुकड़ो ये तो बिखर से थोड़ा को नहीं सूझे वो भी दिन बाद थोड़े खुब से कुछ भी हो से लेकिन प्लास्टिक है वो तो थे बेच दो तो उम्र की पच्छो रूप परिवर्तन करना संभव है। थोनो गुंडा के जो प्लास्टिक थोड़े घर में थे वापर रहे हो फर्स्ट क्वालिटी रो है कि सेकंड क्वालिटी रो है नी वो कितनी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप अजगर के प्लास्टिक दी हो आप घरों खाली कर दी हो तो कोई धोए धोए चमकाए को नोखे है। बीजी बात कंपनी वाले को ले जा से वो बढ़िया धोए धोए एकदम साफ सुथरो कर तो को नहीं गाड़े मोर तो आया सो बाया तो थोनो गुंडा थी कई क्वालिटी प्लास्टिक यूज करो लेकिन जो क्वालिटी कांच रही हो की है कि टूटने वो पछे जुड़े को नहीं ठीक है और ऐसे ही क्वालिटी आप पूरी मिट्टी में पाई जावे कि टूटने जुड़े तो को नहीं प्लस जड़ा गिरे तो कह रहे खुपे को नहीं मिट्टी में मिल जावे पौनी बवे तो में रम जावे
0: बिल्कुल
1: जेड़ो रूप वो ना मिल जावे नहीं ओड़ो उवेरे जेड़े होए ने रूप धारण करे
0: ये कारण इस तोरी शुद्धता कही गई है
1: शुद्धता कही गई है और कह रहे कौम भी आवे यानी अगर टूट भग जावे तो भी ओ कहना तकलीफ कौन देवे आप धरती ना तकलीफ कौन देवे कोई जीव जंतु ना तकलीफ कौन देवे
0: मतलब पर्यावरण वास्ते बिल्कुल
1: बिल्कुल हेल्दी है
0: हेल्दी
1: आगे तो देखो लोग अगर टूट जाओ तो नहीं तो ठिकरी से खेलता था ठिकरी री गोटियों बनाओ था तो बाढ़ जो था ठिकरी टूटे तो और माटकी आप मंडी घर में है जो हमें पानी ठंडो को नहीं देती क्या कोई को सूतक पातक कोड़ा कोम वे तो लोग माटकी रे मोए मतलब मुंडो उतार नीचे और बेस बढ़ाए उमें पौधा उगावे कि ये से बढ़िया की हो से तो हमें तो फैंसी गमला मिट्टी का फैशन में आए आगे तो लोग माटकी और गमला बनावता माटकी कोम आवती चाडो कोम आवतो हल्दी कोम
0: आवती है ये रो कारण भी है मिट्टी रे बर्तन मिट्टी रा गमला होना मटकी नो गमलो बनावना ये रो कारण है कि वो हमें पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन मिले अंदर ही तरफ रहे फिर भी जो मटकी रा पोर होया करे नी किनारा किनारा में जो छोटा छोटा छिद्र होया करे वो सुनो पानी रा ऑक्सीजन मिलती रहे सनलाइट मिलती रहे और वो सुनो पोषण मिलता रहे और जो पानी प्लास्टिक में अगर आज पौधे लगाओ तो वो ना कहते हवा लगे ना पानी लगे कुछ समय बाद वो मरना चांस
1: पौधे तो विकसित को नहीं वे
0: लेकिन मिट्टी के बर्तन में अगर पौधे लगाए जावे तो वो ज्यादा विकसित होया करे और ज्यादा हरो भरो ज्यादा
1: हरो भरो भी सुंदर लगे प्रकृति अनुरूप लगे मिट्टी का रंग की वे वो सुनहरो तो देखो जो शेड आप प्रकृति आपो ने दिया है नी आपन हर चीज सीबा से अनुरूप वे हमें भोजन भी अगर बात कर जाए मिट्टी के बर्तनों में तो थे गुंजन में नौकर भरो नहीं भरो पर तृप्ति मिले अपन जो माटकी में बोणी पियन सु और मेरे खाने सु
0: मु थाने एक छोटी सी बात बताऊं है कि आपो दही जमाओ है दही असल में बर्तनों में कई में जमाओने कई में नहीं जमाओने धातु में तो दही रो बिल्कुल वर्जित है के दही
1: वर्जित है खटाई वर्जित है
0: धाती रे धातु रे बर्तन में जमाओने नहीं लेकिन हमें आजकल आपो स्टील के बर्तनों में जमाओ है जबकि मिट्टी रे ठाव में अगर थे दही जमाओ तो थे देखिया दही कितनी
1: गाढ़ी जड़ी जमे चक्के जड़ी जमे
0: और इतनी गाढ़ी दही जमे और खावण में भी वो में एक अलग स्वाद अपनों महसूस हुए और बीजो एक आप आजकल जो करिया करें सिस्टम हो जाए कि स्मोकी भोजन जो आप लिया करें
1: धुंगा रोड़ो
0: तो वो धुंगा रोड़ो अगर मिट्टी के बर्तन में धुंगा रोड़ो में नहीं चौकड़ो स्वाद हो जाए मना तो नहीं मिट्टी के बर्तन में जो बनो रो स्वाद हुए नहीं पानी रो भी स्वाद वे और भी कुछ वो एक अलग इस तरह ही तृप्ति दिया
1: मिट्टी की खुशबू आवे तेरी मिट्टी में मिल जाओ मिट्टी
0: की खुशबू जे एक मना बहुत बढ़िया अगर के कंस्ट्रक्शन में काम चलते हुए तो सीमेंट बजरी जो मिलाओ नहीं खुशबू है अगर कुछ लोगों ने वो भी बड़ी आकर्षित करी
1: है तो की थे घर से बाहर निकलो है जो मौसम गिर गयो तो बाहर जाके कैसो कड़ा बरसात हुई है मिट्टी में खुशबू आई
0: भाई
1: कड़ा लगी बारिश हुई है तो क्योंकि दूर तक की बारिश हुई है तो मिट्टी गीली खुशबू है नहीं हवाओं के तक ले जावे
0: थोड़ा ध्यान है कि मिट्टी रो है मिट्टी की खुशबू रो एक इत्र भी है
1: अच्छा हाँ। तो नई बात तो बताई तो
0: जब मिट्टी रो मोल इतो ज्यादा है तो इतने रूप में भी वो एक महंगो उत्पाद बन के बाजार में बिक रहे हो।
1: क्या बात है।
0: तो आपने ये बात

0: समझना चाहिए कि मिट्टी री मूल्य कितो है और अपन मिट्टी सु हर चीज सु जुड़ाव रखना चाहिए, चाहे वो बर्तन हो तो की और चाहे बच्चा मिट्टी में भरीज के आवे तो की। कुछ लोगों की यह भी आदत हुई कि बच्चा थोड़ा सा मिट्टी लग जाए तो ना छिटके, अरे गंदो मतो गंदो मत, अरे उनको वंदो गंदो, मिट्टी में जितो रम गया से उतनी वरी हड्डियां मजबूत हो से तो खुद मजबूत
1: हो। और वो ना शब्द भी कुंडा मिट्टी में कदे टपर गंदो कौन वे, मिट्टी से सन जावे, मिट्टी में पूरो लेथड़ी जावे, सरा बोर हो जावे, गंदो थोड़ी वे,
0: असल में वो ना मजबूती दे रही,
1: मजबूत देवे।
0: हां
1: उमे कितना सारा तत्व होया करे, आज कुछ बच्चा मिट्टी खावे नहीं तो उनको की कह जावे कैल्शियम की कमी है, तो बच्चे नो की था उन अपने आप ही खुशबू आकर्षित करी, एक छोटे से बच्चे नो की था की गिरमय की है, लेकिन मिट्टी खुद बिना बुलावे
0: आकर्षित करे,
1: मिट्टी बिना आकर्षित करे। तो धूल है और मिट्टी है, ए चीजों तो एक है, लेकिन जब भोजन रे ठौर रूप में जब परिवर्तित हो जावे नी तो आपने अंतरात्मा नो मोह तक एकदम कभी हील करे। और मिट्टी रो पौनी है, देखो के पशु पक्षियों ने भी आपो मिट्टी रा जो ठौ भी छतों में रख जाए ओ ठंडक देवे, और ये गर्मी रे मौसम है तो थे कितना है कैंपर लाए रखो, लेकिन जुको संतुष्टि तो ना मिट्टी रे होंडे रे सॉरी मिट्टी रे माटकी रे पौनी से को तो हंडी रे पौनी से मिले ओ तो ना संतुष्टि कोई कैंपर रो फ्रिज रो पौनी तो ना दे ही कौन सके।
0: जो आप बचपन की बात याद कराने रखती है तो मनो बचपन वो दिन याद आवे जब छत मथे सूता था और एक मिट्टी की सुराही कने लेके सूता
1: था,
0: वो सुराही रो पानी तो आज भी लगे के अमृत तुल्य दिखाई दे के वो मिल जावे तो सब जाओ भगवान मिल गयो पानी रो।
1: और वो छोटो मुंडो होतो तो नहीं तो मथे घणा रे घरों में लोटी या करसियो या गिलास ढक रखता,
0: हां
1: ओ मथे ढक रखता तो क्योंकि छोटो मुंडो होतो नहीं तो पितले जावे ठो ढक रखता उस सुराई रो मुंडो भी ढकी जाओ तो फिर ते टाइम रो नीचो करो और झट सुराई सुकड़ी
0: सुराई से
1: तो वो एक चीजों रो आनंद अलग तो
0: कैंपर तो जाने आज
1: प्राकृतिक कैंपर आज हणो है सब चीजों ट्रेंड में है। तो आजकल री बिचले आपो बचपन में देखिया था पचाप अंधा धुंध हो गया ये एडवांस वाली दौड़ में, लेकिन वर्तमान जो पीढ़ी है ने बहुत समझदार है वो पच्ची मिट्टी के बर्तनों की तरफ लौट रही है
0: धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ
1: जी हाँ वो समझ रहा है मिट्टी की खुशबू ना मिट्टी की ठौ में दाल बनाओ तो मिट्टी रे मां क्या बढ़िया दाल बनी कड़ी सबसे बढ़िया तो कड़ी
0: कड़ी
1: मिट्टी री तो बर्तन की कड़ी री तो होड़ी को
0: होड़ी को
1: आजकल। और हमें तो मिट्टी का तवा मिट्टी का प्रेशर कुकर
0: मिट्टी का
1: खानी कप कप तो बड़े पे पहले आप कूलर के रूप में देखता था कि भी आप कूलर ले तो वो जो स्वरूप बदल
0: गया तक आएगा
1: हमें तो कुकर आएगा मिट्टी ना कुकर आएगा तवा आएगा तो बनाओ चीजों। तो बहनों अगर थोड़े घर में कोई भी मिट्टी का बर्तन नहीं है उम्मीद है कि माटकी तो हो सही झंडी तो हो सही और वो भी नहीं है नहीं तो एक बार लाओ बात री सार्थकता जद जद जते मिट्टी के बर्तन खरीदो आपो रा जो देसी लोग है कारीगर उन रोजगार दो है नी एक को व्यक्ति भीख मंगी रुपयो देना एक को व्यक्ति ना 10 रुपया दे धंधो शुरू करवाना प्यो में बहुत बड़ो फर्क होया करे। तो कोशिश है करो कि जद को रिटर्न गिफ्ट भी देना है नी कहना तो मिट्टी रे कपोर सेट आप गिफ्ट में दे दियो है नी कहना एक छोटो 100-150 में आ जावे जब बाकी चीज़ जो महंगी आवे नी वो सस्ता पड़े मिट्टी रो कोई दिया है ऐ मिल जावे अना मिट्टी वाला सामान बेचे 10 रुपये से रेंज शुरू हो गई थी 10 रुपये छोटा दिया मिले पगलिया मिले
0: बच्चों ने मिट्टी की गुल्लक दो
1: बच्चों ने मिट्टी की गुल्लक दो बिल्कुल। और को बड़ी उम्र है तो पौधो दो बिना क्या सुंदर सुंदर पौधे की आकृतियां आवे और बर्तन है कोई रसोई लुगाई है तो बिना किचन नी चीज दो रसोई री
0: तुलसी ठाणो गिफ्ट कियो तो और वो भी मिट्टी रो बनो तुलसी ठाणो क्या सुंदर तुलसी ठाणो तो वो देख के याद आवे कि गिफ्टिंग रे रूप में आप ये ट्रेंड नो एक नई शुरुआत
1: नई शुरुआत दे सकजे और ये में अपार संभावनाओं है मतलब हर उम्र रे व्यक्ति रे वास्ते में गिफ्ट है बुढ़ो वास्ते भी है बड़ो वास्ते भी है कुछ और यंग जनरेशन ने नहीं उन्हें मिट्टी का विंड चाइम दे दो जो लटका जाए ना आप घर में घुसते ही तो वो जो आवाज आवे आवाज हो खनखनाट वो बड़ी सुंदर लगी। तो गिफ्टों ने मोए भी थे समझो अपार अपार संभावना है आप प्रत्येक आयु वर्ग रे व्यक्ति नो ये मोए शामिल कर सकते हैं बस थोड़ी सोच ना बदलन की जरूरत है
0: बिल्कुल और जरूर बदल से सके आप सुन रही है और चाव से ज्यादा अपन सुने तो अपना विचार भी मन में जरूर प्रवेश करें और प्रवेश करने साथ साथ में मेरी मानसिकता भी बदलन हो प्रयास आपो कर रहे हो तो जरूर बदल से मानसिकता और देश री प्रगति वास्ते जो भी सहाय कदम हो जरूर सखियो उठा से। पर ये चर्चा रे दौरान मने लगे कि एक सहायक कदम प्रतिबंध होना भी उठाना चाहिए मनोरंजन कराना
1: जी जी जरूर
0: ताकि सखियो रो मनोरंजन और सुने वो भी बीच बीच में बढ़िया।

0: रहे धुआं चीजा रही तो यह एक बहुत ही बढ़िया खाद रो कॉम करे
1: खाद रो कॉम
0: ये साथ ही आप जो नियमित रूप से दैनिक रूप से घर में जो सब्जी और सेवन करे बुरा छिलका
1: छिलको ना भिड़ा करता जाओ
0: छिलको ना सुखाता जाओ और वो ना पीस के वो ना भी बुरकाता जाओ
1: बुरकाता जाओ
0: बस तो यह भी एक बढ़िया फर्टिलाइजर रो कॉम
1: और आसान है थोड़ी सी आप धूड़ ली ठीक है थोड़ी धूड़ ली हमें बरसात हो से नहीं तो जना गाय रा गोबर भी जावे नहीं उना कीचड़ का दाव जावे आप हथकुन में भी जावे अपने तावड़ो एड़ो पड़े कि हणो तो पग धरिस तो कुने रुकाल देखे तो सुखी भणक धरती आप ही प्यासी है तो जिके टाइम अगले दिन धरती सुखी हो जावे नहीं तो एक को छाजड़े भर थोड़ी सी धूड़ लाए कुंडे में कर दो सुखोड़ी वे को स्मेल वे को नहीं पर में गोबर जो पिघलोड़ा अंश है नी और सब बिर में रवे ओ थोड़ा डाल दी कुंडे में हमें आलू रा छिलका नीरा छिलका वरा छिलका उनमें घत्ता जाओ और बे चार दिन ऊंचो नीचो करो 15 दिन में थोड़ी खाद तैयार अपने आप हो जाए क्योंकि मिट्टी ने वो रूप ले ले से
0: तो है जो आप यही अपने आप बनाए सकते बाकी जो जैविक खाद जो बनाया करे वो भी अगर दे सर्च
1: केचुआ खाद
0: को ना केचुआ खाद ना जैविक खाद अलग है करे
1: अच्छा
0: ना केचुआ खाद में ज केवे जैविक खाद तो लेकिन जो है प्राकृतिक खाद जो गया करे नी वे में ये तरीके से बनाया करे जगह में एक बड़ो खड्डो खोद के वे में नीचे पत्ता पौने सूखा पत्ता बिछाई
1: जी
0: वे मथे जो भी फूड वेस्ट वे वो सारा बिखेर दीजिए वे मथे बड़े गोबर की परत लगा भी मतलब पछो मिट्टी रो लेप करके वो बंद कर दे वे मथे ए मतलब परत दर परत बनाता
1: कबूली बना देवे कबूली
0: ढक के रख दीजिए एक डेढ़ महीने
1: जी
0: तो वो मोय मोयर मोय जो वो मैं
1: सड़न पैदा हुए
0: हाँ वो सड़न पैदा हुए और केमिकल क्रियाओं जो वे पूरी वजह से वो बढ़िया खाद बन के तैयार हो जावे और वे ना जब खेती में इस्तेमाल किया जावे तो फसल लहलहा उठे ये वास्ते आजकल लोग प्राकृतिक खाद रो उपयोग ज्यादा कर रहे हैं और वो प्राकृतिक खाद की सबसे बड़ी खासियत है कि यूरिया और जो केमिकल वाली खाद है वो तुरंत अपन रेस्पॉन्स तो देवे लेकिन धीरे धीरे मिट्टी रे उपजाऊ बने खत्म करती जावे लेकिन प्राकृतिक खाद धीरे धीरे आप उपजाऊ बने और बढ़ावती रहे और मिट्टी रे उपजाऊ बने कदे खत्म होन को नहीं देवे
1: हमें
0: ऊर्जा उर्वरकता बनीती जावे हर साल नए रूप में बनती जावे
1: बनती
0: और बढ़ाए रखे
1: बढ़ाए स्वाद अलग है जो थको अड़ी मिट्टी बनाए कि मैं घर में दोना मेथी डाल के मेथी उगाई थी पूरे पत्ते ने चख देखे सही तो है पूरे पत्तो इतो कड़वो बाड़ो जो भी मेथी रो स्वाद वे ओ हतो के मन आश्चर्य हो गयो और वाकई में जो सब्जियों वे बिना पेस्टिसाइड्स रहो
0: बिना
1: चार गुणे दामों में बिकिया करे
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: तो आप ना घर में आप
1: पौधारोपण
0: पौधारोपण जरूर करना है और हो सके जब तक प्राकृतिक खाद रो भी उपयोग करते रहना तो तृप्ति बहन आप और चर्चाओं तो बनी रहे और बाकी भी रह जावे लेकिन फिर भी समय जो है वो बाकी रहे को नहीं वो आप
1: सीमाओं ने बंद देवे
0: आप और सीमाओं ने रोक देवे बंद देवे और अगली बार वास्ते नई शुरुआत करनी सलाह भी देवे तो अगली बार नई चर्चा और जानकारी के साथ हासिल हो हाजिर हो सो सख्य मुखातिब आज रही कार्यक्रम में
1: समाप्ति कर राम राम।

0: होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान कैंपेन ऑफ मिलिट्री
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को

0: को मुफ्त सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली NCR क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे पश्चिम। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी भी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
2: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4

0: प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। आज मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुत इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्रों में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
3: Oh, no, no, no, no.

ना संग अखियां लागी आज, अखियां ना संग अखियां लागी आज, जो मैं बार बार मेरे मन में प्यार, ऐसा तो मौसम आए ना, अखियां ना संग अखियां लागी आज, अखियां

एक प्यारी छवि मेरे मन में बसे, दिन रैन मेरे नैनन में हंसे, नया सपना मिला कोई अपना।

मिला फिर ऐसे क्यों मेरा मन गाए ना अखियन संग अखियाला आज अखियन संग।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
2: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम सुन रहे हैं।

आसमां तो चूमे जब चले तो ये जहां आरज़ू हमारी आसमां तो चूमे हम।

हम नई बहार के राजदार, हम हंसे तो हंस पड़े हर कली, हम चले तो चल पड़े जिंदगी, सारे नजारों में फूलों में तारों में हमने ही जादू भरा।

हमसे है फिजाओं में रंग बू, हम है इस जमीन की आबरू, नदियों की रागनी हमसे है, हर तरफ ये ताजगी हमसे है, सारे नजारों में फूलों में तारों में हमने ही जादू भरा। हम जब हमारी आसमां को तुम।

0: फासले खुद पर खुद सिमट गए फासले, नारे नगारों में फूलों में तारों में हमने ही जादू भरा।
1: हार जो हमारी
2: हम हिंदुस्तानी फिल्म से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी की बोलों से सजे हुए उषा खन्ना के संगीत के साथ संगीतबद्ध इस गीत को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
3: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
4: देखो जी बहार आई गांव में खिली तनू,
3: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
3: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
5: तुम्हारी याद सताती है
3: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। मॉडर्न गन मॉडर्न गर्ल इस फिल्म का यह गीत सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में गुलशन बावरा के बोल और रवि के संगीत के साथ आइए सुनते हैं।

दिल में है कुछ कुछ कहे जुबान, प्यार यही है जाने जान। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना, ये मौसम रंगीन समान, खैर जरा ओ जाने जान। तेरा मेरा मेरा तेरा

बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है।

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता।

मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है घराना फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और रवि का है संगीत।

आसान है जाना महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार।

अब बदला से क्या करूं मैं, आई फिर की रात अब बदला से क्या करूं मैं, याद आएगी।

شبابير ون میرے یار شبابير میرے یار شبابير

0: यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर,
1: मेरे यार शब्बा खैर।
2: हम सुन रहे थे भाभी की चूड़िया फिल्म का यह गीत आशा भोसले, मुकेश की आवाज में महेंद्र नरेंद्र शर्मा के बोल और सुधीर फड़के ने इसे संगीतबद्ध किया। इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नग्न समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनी धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली।

0: साथियों, सहेलियों और अन्य सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार। और मेरा भी अपने सभी जो भी सखियां हैं, जो भी सखा हैं, सभी सभी को, सभी श्रोताओं को और चंचल जी आपको नमस्कार। आरती नमस्कार। हमारे सभी सुनने वाले बड़ी बेताबी से इंतजार करते हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम का। और बहुत सारे श्रोता हैं जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं, लेकिन कुछ श्रोता हैं जो नहीं जुड़े हैं
1: जी।
0: तो आज किन विषयों पर हम बात करेंगे ये बता देते हैं। तो गर्मियों का समय है और पानी का बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे लोग अनायास ही
1: बिल्कुल
0: बहुत सारा पानी खर्च कर देते हैं, तो किस तरह से इस पानी की बचत बहुत महत्वपूर्ण है, करनी चाहिए, क्यों जरूरी है, इन सब बातों पर हम
1: बिल्कुल। और मौसम कोई भी हो, पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और पानी के बारे में आप हमें भी बताइए, आप किस तरीके से पानी की बचत करते हैं आपको
0: जी,
1: और लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं इस चीज के लिए। और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत ज़ीनिया पर्सी मास्टर जी की, जो की है संस्थापक है ज़ीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस की। और साथ ही हम हल्की फुल्की बातों में करेंगे बहाना ऐसा कौन सा है जो अक्सर काम कर जाता है।
0: बिल्कुल, ये बात तो बड़ी कहते ना कि एक रोचक भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए या सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई बहाना उनके पास में तैयार होता है।
1: और बहुत सारे लोग बहाने तो बनाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं कि हाँ, ये झूठ बोल रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। लेकिन आप कैसे, कौन सा बहाना बनाते हैं जो कभी पकड़ा नहीं जाता है,
0: और कौन सा ऐसा बहाना है जो अक्सर काम आता है आपके, आपको सुरक्षित रखने के लिए। बहाने क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। और मुहावरे की आज हम एक बात करते हैं, तो आज हमने जो मुहावरा चुना है वो है आम के आम
1: गुठलियों के दाम।
0: यानी
1: वैसे भी आम का मौसम है ना, आम खाए जा रहे हैं।
0: हाँ, तो दोहरा जो फायदा है उसकी बात होगी, लेकिन भाई अब आम के आम गुठलियों के दाम तो जानकारी होगी, मनोरंजन होगा और गीत भी होंगे।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, मैं ये कहूंगी अपनी जो भी श्रोता है, सखियां हैं, जो भी सखा है, कि आप उसमें आम के आम जो गुठलियों के दाम मुहावरा है ना, खाली इसका अर्थ ही मत लिख के भेजिए, क्योंकि अर्थ तो चलिए हमने समझा, आप थोड़ा सा उसके बारे में और रोचक बना के भेजिए उसको।
0: बिल्कुल, सुनने से ही पता लगता है कि दोहरे फायदे की बात हो रही है, तो उसका अर्थ तो सभी जानते हैं, लेकिन आप कि जीवन में दोहरा फायदा किस तरह हुआ, मतलब आम क्या और गुठलियों के दाम,
1: और आपने किसी को ऐसा दोहरा फायदा पहुंचाया हो तो वो भी बताइए।
0: तो भाई कार्यक्रम में कैसे होते हैं आम क्या गुठलियों के दाम,
1: गीत सुनने से
0: जी।

0: तो कोरा कागज यानी कि बहुत सारी चिट्ठियां पहले हमें मिला करती थी, लेकिन अब हमें संदेश मिलते हैं हमारे सुनने वालों के।
1: और अभी हम जो सेगमेंट सबसे पहले लेने वाले हैं वो है हमारा सखी विशेष, यानी अपने सखी विशेष के बारे में कुछ बातें बता,
0: हम बात करेंगे ज़ीनिया पर्सी मास्टर के बारे में। जी,
1: तो ज़ीनिया पर्सी मास्टर भारत की एक जानी मानी महिला उद्यमी है जो बिजनेस और फाइनेंशियल रणनीतिकार है। और ज़ीनिया एक व्यवसायिक परिवार से आती है, उनके परिवार का लॉजिस्टिक्स और बिजनेस क्षेत्र में लंबे समय से संबंध रहा है।
0: ज़ीनिया पर्सी ने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध गिलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और रेवेन्यू मैनेजमेंट में पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने लंदन में फिट्ज़ी विलियम इंस्टीट्यूट से इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया हुआ है।
1: और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुबई और अन्य स्थानों पर होटल इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने प्री ओपनिंग टीमों में भी काम किया जिससे उन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का व्यवहारिक अनुभव मिला। और साल 2013 में उन्होंने अपना फ्रीलांस इवेंट से शुरुआत की।
0: और इससे पहले ज़ीनिया इवेंट्स का, इसे पहले ज़ीनिया इवेंट्स कहा जाता था। बाद में 1 अगस्त 2014 को उन्होंने अपनी कंपनी ज़ीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को आधिकारिक रूप में स्थापित किया। और ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और रणनीति साझेदारियों के क्षेत्र में कार्य करती है।
1: जी, उन्हें विशेष रूप से लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, कॉरपोरेट गवर्नेंस और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कामों के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी मुख्यतः वेडिंग प्लानिंग, कॉरपोरेट इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और डेस्टिनेशन इवेंट्स, लग्जरी गेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सेवाएं प्रदान करती है।
0: और उनका काम वी इन्वाइट यू यू ओन इवेंट इस विचारधारा पर आधारित है, यानी ग्राहक अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद ले और बाकी व्यवस्था सब कंपनी संभाल लेगी। हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी सक्रिय हैं।
1: जी, वो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉमेडी क्लब और लाइव इवेंट्स में काम करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय की प्रेरणा मिली थी। और इसके बाद उन्होंने स्वयं का ब्रांड भी शुरू किया। ज़ीनिया सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं और पर्यावरण तथा CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें गतिविधियों में वो भागीदारी करती रही हैं।
0: ये रही बहुत अच्छी जानकारी उनके बारे में। और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली, और अब जो बातें होंगी वो होंगी पानी के बारे में, पानी की बचत के बारे में।
1: बिल्कुल, पानी, और देखो पानी का जो

0: रहते कहते ना पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी का कोई रंग नहीं है फिर भी हर एक की जरूरत है। कहते हैं कि जिंदगी अगर है तो पानी सबसे जरूरी चीज है हमारी, और जितनी भी सोचिए सभ्यताएं बसी, जितनी भी हमने प्रगति करी वो सब कहाँ, सिर्फ नदियों के किनारे बसी।
1: जी,
0: जिससे कि हमारे देखो जीवन के लिए जरूरी क्या चीज है, पानी। और अभी कुछ रिसेंटली हम लोगों ने अभी कुछ खबरें भी सुनी कि किस तरह से पानी नहीं मिलने की वजह से 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये सोचिए, ये हमें जागरूकता का विषय भी है कि अभी से हमें चेत जाना चाहिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारे पास कल भी नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही बात है, जल है तो ही कल है। जिस तरह हवा बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही पानी जरूरी है। और बहुत सारी नदियों में पानी का जल स्तर दिन पर दिन कम होता जा रहा है। कई बार हम पानी को प्रदूषित कर देते हैं, जिन जो हमारे पानी के स्रोत हैं उन्हीं को हम गंदा कर देते हैं। वहां पर जो कल कारखाने हैं उनसे पानी गंदा हो जाता है, या फिर हम जो प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं, हम बहुत सारी जगहों पर जब घूमने जाते हैं, झील नदी समंदरी किनारों पर हमें जाकर बैठना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर हम बहुत सारी गंदगी छोड़कर आते हैं। लेकिन बात अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पानी जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है उसे हम किस तरह से यूं बेकार की चीज समझकर वेस्ट करते रहते हैं, और इसका खामियाजा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना।
0: बिल्कुल, और लोग भुगत भी रहे हैं। सोचिए एक जगह हमें अभी यहाँ पे अगर सहूलियत से पानी मिल रहा है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी के लिए लोग कितनी कितनी दूर तक चल के जाते हैं और दो दो बूंद पानी के लिए तरसते हैं कि वहां पे अगर अगर उनको पानी एक घड़ा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं उस चीज को।
1: इसीलिए देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं कि पानी की बचत करना एक अच्छी बात है, फिर वो पैसा हो या पानी, इसके बिना सारी दुनिया है फानी। पृथ्वी पर बसे हर एक जीव के लिए पानी प्राथमिक जरूरत है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है और यही सबसे बड़ा गम है। इन्होंने जो बातें लिखी है ना उसे इस तरह तुकबंदी में जोड़कर बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं ये। इसे बचाने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं कि जल के बिना, जल बिन जरूरी उपयोग, बिना जरूरी उपयोग के इसे वेस्ट ना करें। पानी के बहते नल को बंद करना जरूरी है। वर्षा का जल का संचयन करना चाहिए जो साल भर तक शुद्ध रह सकता है। यदि हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो जल बिन मछली जैसे तड़पती है वैसे ही कभी हमें भी तड़पना होगा।
0: बिल्कुल, और कह सकते हैं कि जल की हर एक बूंद में जीवन का विस्तार है। सूखी धरती की प्रार्थना का ये मधुर उपहार है। मत छीनो इसकी सांसें, मत इसका मान हरो, जल बचेगा तो ही जग में मानवता का श्रृंगार है।
1: बिल्कुल सही है आरती, क्योंकि जल ही जीवन है। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है वो कह सकते हैं कि पानी है।
0: जी,
1: पीने के लिए, खेती के लिए, बड़े बड़े जो उद्योग चलते हैं उनके लिए, स्वच्छता रखने के लिए भी, ये क्रम है, घर को अपने आप को स्वच्छ रखना है तो उसके लिए भी पानी जरूरी है, और पर्यावरण संतुलन के लिए भी पानी जरूरी है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण और पानी का जो दोहन हो रहा है सबसे ज्यादा, उसके कारण जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल, और चंचल जी सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है।
1: जी
0: ठीक है ना, इसी वजह से यहाँ पे जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। तो ये सोचिए कि अगर हम यहाँ पे अगर जल को ही खत्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व कहाँ बचेगा। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को जरा सा भी ना बर्बाद करें। जैसे छोटे बच्चे, उनको अकल नहीं है, तो अगर उस चीज को वो कर रहे हैं तो उनको समझाइए, सिखाइए। अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे जाके समझेंगे।
1: इसी पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत कैसे ना करें। कपड़े बर्तनों को धोया पानी कपड़ों में डालकर नल खोलकर कोई काम ना करें। मग्गे बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें जिससे पानी की मात्रा कम खर्च होगी। और इस समय गर्मी के मौसम में पंछी जानवरों के लिए भी पानी जरूर से रखें। पेड़ पौधे लगाएं, आसपास गड्ढे करें जिससे उनमें पानी का संचय हो सके। और छतरी रखकर टंकी को ओवरलोड किया हुआ पानी सीधा आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह निकासी करे हुए पानी को गड्ढों या पेड़ पौधों में छोड़ सकते हैं और पानी की बचत हम कर सकते हैं।
0: बहुत जरूरी है। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आंखों का पानी और धरा का पानी सूखना बड़ा ही दुखदायी होता है, जो अंदर तक दर्द के रेगिस्तान को जन्म देता है, और जहां फिर प्रेम का अंकुर पर अपना मुश्किल हो जाता है, जीवन खतरे में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लोगों को पानी के लिए भटकते देखते हुए मन में टीस सी उठती है, परंतु एक बार बरसात हो गई तो लोग भूल जाते हैं और फिर वही पानी का अपव्यय शुरू हो जाता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है।
1: सही बात है, बारिश का जो मौसम है वो सिर्फ 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 4 महीने रहता है।
0: बिल्कुल,
1: इसके बाद के जो 8

पल रस्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की

कितने भी रंग थे सब तेरी आंखों में ढल गए, लाखों दिए मेरे प्यार।

0: तो अब हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट से बच सकेंगे। इसीलिए हमें जल है तो कल है के संदेश को अपनाकर पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी की बचत का महत्व तो बहुत ज्यादा है, हम कई तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि घर में नल को खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, मोटर लगाया है तो मोटर बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज सही नहीं है। इस तरीके से हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो कल को ये जल जो हमारा जीवन है ये हमारे आने वाले लोगों को पीढ़ियों को कैसे मिलेगा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमें कई तरीके से अपना सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें। अगर किसी के घर में टंकी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टंकी बंद करना भूल जाते हैं, तो उसको आप बंद करें सही समय पर करके, टाइमर लगाइए उसमें। और अगर किसी कोई इस तरीके के मतलब जो उन्होंने लिखी इस तरीके की चीजों का पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं, घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये इन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद जो पृथ्वी का 70% पानी है वो जो 70% पानी है मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो वही वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें, और अगर कोई नल टिप टिप का

0: रहता है, तो उसको भी ठीक कराइए। उसको ऐसे ही नहीं कि आपने से छोड़ दिया, अगर कहीं आपको बाहर
1: जी
0: भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश
1: बहुत
0: करिए।
1: सारी महिलाओं की आदत होती है, जब वो कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं तो नल चालू है, इधर कपड़ों पे वो साबुन लगा रही हैं या बर्तन को साबुन लगा रही हैं और पानी लगातार बह रहा है, तो उतनी देर के लिए जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं, नल का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप नल को बंद कर दीजिए। इसी तरह से कुछ पुरुषों की आदत भी होती है, जब वो सुबह सुबह शेव करते हैं तो इधर नल
0: हाँ
1: चालू है, यहाँ
0: चल रहा है
1: उधर काम चल रहा है उनका,
0: बिल्कुल।
1: तो उतनी देर के लिए जब तक आप शेव कर रहे हैं आपको अपना रेजर नहीं धोना है, तो आप उसको बंद कर सकते हैं ना नल को। इसी तरह से महिला पुरुष बच्चे ये
0: और साथ
1: सबकी
0: ही ये
1: जिम्मेदारी
0: अगर
1: है।
0: छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी पीते हैं, तो हम पानी थोड़ा सा पानी पिए, 2 घूंट पानी पिए और पानी बाकी
1: हाँ,
0: फेंक दिया,
1: आधा
0: क्योंकि
1: ग्लास
0: वो
1: पानी पीते हैं
0: बिल्कुल
1: और आधा
0: जो
1: फेंक देते
0: पीने
1: हैं।
0: लायक पानी होता है, कितना कीमती पानी है, उसको हम फेंक देते हैं यूं ही।
1: कई बार जब हम किसी समारोह में जाते हैं, किसी आयोजन में, उत्सव में जाते हैं, तो आजकल पानी की बोतल देने का सबसे ज्यादा चलन है, तो वहां भी आधी बोतल पी के आधी बोतल को हम फेंक देते हैं, तो ऐसा ना करें। आप बची हुई आधी बोतल पानी को अपने पास ही रखिए, ताकि दोबारा जरूरत पड़ने पर एक नई बोतल का इस्तेमाल करने की बजाय आप उसी बोतल के पानी का फिर से इस्तेमाल कर सके। और इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी पर अगर पानी नहीं होता तो ये अन्य ग्रहों की तरह सूखा और वीरान होता। पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी मांग है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत सीमित है और बढ़ती आबादी के साथ इसका संकट भी गहराता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाना पर्यावरण और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है, जबकि इसकी बर्बादी गंभीर परिणाम ला सकती है। घर में किसी को भी किसी भी नल या पानी से पाइप टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने
0: बिल्कुल
1: लिखकर भेजी है, तो अगर सभी जागरूक हैं तो जो जागरूक नहीं है उन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। आगे उन्होंने लिखा है कि आजकल सभी घरों में वाटर प्यूरिफायर लगे हुए होते हैं और सबसे अधिक पानी की बर्बादी यहाँ होती है, तो कुछ लोग इसे संग्रहित करके पौधों में डालते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
0: बिल्कुल। और अगर आप कपड़े धो रहे हैं या इस तरीके का अगर पानी आपका बच रहा है, या आपने सब्जियां धोई, तो वो पानी जो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अलग से आपको वहां पे पाइप लगा के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी होती है पाइप लगा के जब हम पानी डालते हैं।
1: इसी तरह से बहुत से लोग एसी लगाकर जब घर में रहते हैं तो उसके पाइप से जो पानी रिस कर धीरे गिरते रहता है और बाल्टी में जमा हो जाता है, तो उसको भी आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार छत या आंगन धोने में इस्तेमाल कर
0: बिल्कुल।
1: सकते हैं।
0: तो इस तरह की आप पानी छोटी छोटी चीजें भी करेंगे ना, तो बहुत सारा पानी बचेगा और बहुत जरूरी है अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अब अगली जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, है
1: क्या
0: ना, तो
1: बात है,
0: इसलिए हम उस युद्ध को रोक सकते हैं होने से।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: उसके लिए हमें, क्योंकि अब देखिए खरीद के हमें पानी पीना पड़ता है, अगर हमें साफ पानी चाहिए तो जरूरी है पानी की बचत करनी।
1: तो बातें और भी बहुत सारी करनी है, लेकिन इस समय घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि लेते
0: अंतराल
1: हैं छोटा सा अंतराल।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूं आरती श्रीवास्तव।
0: और हम बात कर रहे थे पानी की बचत के बारे में। तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं श्रोताओं से। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों को भी रोका जा सकता है। पानी की कम खपत से प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झीलों पर दबाव घटता है, जिससे जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जनसंख्या और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने से पीढ़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जब नहाते हैं तो ढेर सारा वो शॉवर चला के नहाने की आदत होती है ना।

0: तो बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। आप तो उससे बाल्टी से नहाइए, मग्गे से नहाइए, वो ज्यादा अच्छा है। बल्कि जो इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, वो भी रुकेगी। और साथ ही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, जो वर्षा का जो जल होता है उसको भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिस तरह से वो बना के बताया गया, जिसे हमारे श्रोताओं ने भी बताया, इस तरीके से आप पानी की बचत जरूर करिए।
1: और जैसे कहते हैं ना कि जो चीज हमें फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कई बार उसकी कदर नहीं होती। जिस तरह से हवा हमें मिल रही है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें जहां से मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह से जब वर्षा का जल हमें कोई बिना कीमत चुकाए वो वर्षा जल हमें मिलता है, हम उसका संचय करते नहीं और बाद में वही पानी हमें खरीद कर लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहां जल संकट अति का बहुत ही ज्यादा है, वहां चाय की कीमत से ज्यादा पानी की कीमत होती है। ऐसा हमारे श्रोता भी लिखकर बता रहे हैं कि चाय या अन्य चीजें वहां सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन पानी बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीद कर वो लोग लेते हैं।
0: और जब से मैं बताऊं कि मैंने तो ये चीज खबर सुनी तो सच में अजीब सा लगा। अब जब भी पानी का इस्तेमाल करते तो खुद ही एकदम से सचेत हो जाती है, बस सोच के कि सोचो उस समय उन लोगों को सिर्फ एक दो बूंद पानी मिल जाती तो उनकी जान बच जाती। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, पानी का क्या महत्व है। जब तक हमारे पास बहुत पानी आ रहा है, हम पानी पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, और जब जिस समय कहते हैं ना कि अब पानी कटौती होने वाली है या पानी दो दिन नहीं आने वाला, तब लगता है यार अब कैसे होगा, अब कैसे काम चलेगा। तो हमें सोचना चाहिए इसी तरह से, समय से आप काम करना चाहिए कि अब पानी नहीं आए तो हम क्या करेंगे।
1: एक दिन की कटौती में अगर हम इतना परेशान हो जाते हैं, अगर ये कटौती पानी को बहुत जल्द से अगर घट गया तो बहुत ज्यादा अगर होने लगी तो कितना हम परेशान होंगे। उस परेशानी से बचने के लिए महत्व इसका हम बता रहे हैं। और आप सुन लेते हैं कि

0: भाई क्या हुआ जब एक किसान ने आम तो बेचे ही, आम बेचकर पैसे कमाए, लेकिन जब गुठलियां बच गई
1: हाँ।
0: वो एक नर्सरी को बेच दी ताकि नए पेड़ आम के लगाए जा सके। तो हाँ। यानी कि जो मूल चीज है उसे तो आपने मुनाफा कमाया ही, लेकिन जो बची हुई चीज है उसे भी आपको मुनाफा मिला है। दोहरा फायदा, दोहरा लाभ, डबल मुनाफा, इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम।
1: गुठलियों के दाम भी उसने ले लिए और खाली उसी ने नहीं लिए, पेड़ लगाने से सबको फायदा हुआ तो बहुत अच्छी चीज है।
0: तो ये तो हमें कहा था क्या कहते हैं, बहुत सारे इसी तरह से हम काम करते हैं कि दोहरा फायदा हमें मिलता है। तो हमारे श्रोताओं के साथ क्या अनुभव हाँ। रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई।
1: बिल्कुल, तो हमारे एक श्रोता है जो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है, जिसका मतलब एक ही काम या किए गए प्रयास का दोहरा लाभ प्राप्त होना है। जैसे कि मैं ठहरा बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे लिए सखी सहेली सुनना और कमेंट लिखना समय जो प्रसार करने के साथ साथ मनोरंजन और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है। मतलब आम के आम और सखी सहेली के नाम।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि आम दिन दिन हम रोज ही खा रहे हैं और गुठलियों को सहेज कर रख दिया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो इन्हें उगा देंगे। तो हो गया ना आम क्या और गुठलियों के दाम, एक पंथ दो काज की तरह ही होती है ये कहावत।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और एक और हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि इसमें इसे अंग्रेजी में टू बर्ड्स विद वन स्टोन भी कहा जाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। मतलब एक ही मुहावरा है, उस मुहावरे को बहुत हाँ, कई तरीकों से
0: एक
1: कहा जाता है।
0: दो का जाम क्या गुठली के दाम और एक तीर से दो निशाने, लगभग एक जैसा ही अर्थ है इन बातों
1: बिल्कुल का। और व्यवहारिक जीवन में इसका इसको कहा जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पुरानी किताबें अच्छी कीमत पर बेच देता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। और व्यापार की बात करें तो जब कोई किसान आम बेचने के साथ साथ उसकी गुठलियों या छिलकों का उपयोग करके अचार, तेल या अन्य उत्पाद बनाने के लिए करता है तो आम के आम और गुठलियों के दाम भी, तो सच में एकदम सही बैठा कि उन्होंने आम खाया और गुठलियों से उसके छिलकों से अचार भी बना लिया।
0: और आगे एक श्रोता का संदेश है कि ये मुहावरा हमें संसाधनों का सही उपयोग करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सीख देता है। दैनिक जीवन में जब किसी व्यक्ति को एक प्रयास से कई फायदे मिलते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुहावरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोकप्रिय भी है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाषा की सुंदरता वृद्धि में मुहावरों और कहावतों का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ ही है उपभोक्ता के पूरे पैसे वसूल। वार्तालाप या कहानी लेख में विषय संग वस्तु का कोई संबंध नहीं रहते हुए भी वस्तु अपनी उपयोगिता, गुण और महत्वपूर्णता की उपस्थिति दर्ज करा देती है।
0: और हमारे श्रोता तैयार हो जाए भी अपने बहाने बनाने के लिए जिन्हें वो अक्सर काम में लेते हैं, लेकिन तब तक एक गीत सुन लेते हैं।

0: मेरी ही बाहों से
1: फिर है सजना ओ जल क्यों मेरी निगाहों से
0: मैं हूँ तेरे दिल में है फिर भी मेरी जान तूने ही मुझको नहीं देखा मैं करूँ क्या
1: अरे प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं कहना था उसके नजर से भी तू दिल से नहीं जाता
0: अरे प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं कहना आता उसके नजर से भी तू

0: आना ना तो इसी बातों में
1: रखना दिल को लेकर इन हाथों में।
0: अरे दिल है पागल आना ना तो इसी

प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, नजर से भी तू दिल से नहीं जाता।

0: आरती, अक्सर हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए बहाने का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ बहाने मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी के द्वारा, कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ या 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, या अगर फोन नहीं उठाया तो क्या बोलते हैं, भाई मेरा तो फोन ही साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं देखा, या कहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। कहीं अगर समय पे ना पहुंचे तो कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत मिल गया, और अगर समय पे ना पहुंचे या फोन भी नहीं देखा तो अगर मैसेज करने की बात हुई मैसेज करना भी भूल गए, अचानक से बहुत जरूरी काम आ गया, फोन की बैटरी खत्म हो गई, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारे बहाने हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है बहाने के बारे में, अब ये बात है पढ़ने वाली।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बहाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, सभी को उल्लू बनाना ये भी आसान काम नहीं है, अगर बहाने में वफाएं हो तो तूफा भी किनारा है, वरना साहब के गुस्से से गिरती बिजली का नजारा ही नजारा है,
0: क्या बात है?
1: सामने वाला आसानी से विश्वास कर सके, ऐसा बहाना बनाओ कि हम राहत की सांस ले सके। ज्यादातर लोग तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहाने का उपयोग कब और कहाँ करना है ये सोचना चाहिए, नहीं तो आपके योग वियोग में बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये तो बहाना बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने का, जो बच्चे अक्सर बनाते हैं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए।
0: और बहाना जो अक्सर काम करता है, सबसे पहले तो बहाना विद्यालय में बच्चे होमवर्क नहीं करें और कहेंगे कि मैडम कर तो लिया लेकिन कॉपी घर पे रह गई, अब क्या कहें, और शिक्षक बहाना एक्सक्यूज, किसी काम करने के लिए बचने के लिए, अपनी गलतियां छिपाने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए ये एक कारण होता है, यानी कि अलग अलग तरह का बचाव है।
1: बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण मिलने लगे तो समझ लीजिए ये बहाना है।
0: बिल्कुल, बहानों का इस्तेमाल लोग स्थिति से बचने के लिए, टालमटोल करने के लिए, या असफलता को सही ठहराने के लिए करते हैं, जैसे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था, तबियत खराब हो गई, बैटरी खत्म हो गई, कोई जरूरी काम आ गया वगैरह वगैरह।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहाने जो अक्सर काम आते हैं, इस विषय पर एक बहाना ऐसा है जो हम सभी ने कभी ना कभी, बहुत लोग अक्सर करते ही है, और वो सटीक लग भी जाता है, और वो है फोन कॉल से संबंधित। अगर किसी अनचाहे का कॉल अटेंड नहीं करना हो तो सीधा सीधा बहाना होता है, अरे फोन तो चार्जिंग पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है, कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच से चल सकता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहाना ही है।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता तो सबसे बड़ा अच्छा बहाना होता था कि पेट दुख रहा है, और अक्सर बच्चे ये बहाना करते हैं। और आगे श्रोता लिखते हैं कि बहाना जो अक्सर काम आता है, तो ये कहूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दफ्तर ना जाना हो तब भी हम यही बहाना बनाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं जाना आना संभव ही नहीं है,
1: बिल्कुल अक्सर होता है ऐसा। और एक कुछ होता है जो कहते हैं कि बहानों में हमारी श्रीमती जी का, हमारे जो श्रीमती जी है वो एक नंबर है, कुछ काम कहो तो बहाना बनाती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि, और वो स्वयं काम कर लेता हूं, और फिर वो कहती है मैडम अरे वाह तनिक थोड़ा धैर्य रखते तो हम कर ही देते, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बहाने नोक जोक प्यार उसमें है तो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमारी तारीफ भी करती है, भाई आप काम कर देंगे तो तारीफ

0: आपकी होगी वैसे अच्छी चीज है ये, इस तरीके का बहाना, और आप उनकी बात मान के थोड़ा बहुत काम करने का हाथ बता देते हैं।
1: हमारे श्रोता ने लिखा कि बचपन में स्कूल जाने के नाम पेट दर्द का बहाना बनाया करते थे, पर मैंने एक बहाना अभी भी मारा है। मुझे सोशल मीडिया पर कुछ अटेंड करना था, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दिया कि मेरा पेट खराब है, लेकिन मैं पकड़ी गई और मुझे स्कूल जाना ही पड़ा। और उस समय सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए, वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी आ रहा था और वीडियो पर भी था, लेकिन मैंने ना दे दिया और इसलिए सोशल मीडिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या किया था।
0: हाँ, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो आपने बहाना बनाया था।
1: जी,
0: एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के अपने अपने बहाने होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार लोग वही बहाना चुन लेते हैं जो उस वक्त उनको सही लगता है। और मेरे साथ भी एक मजेदार घटना हुई। मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसे विश करना था। सुबह तक तो मुझे उसका जन्मदिन याद था, लेकिन दिन भर की व्यस्तता में मैं उसे विश करना भूल गई। शाम को जब उसका फोन आया तो वो मुझसे थोड़ी नाराज थी। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार मुझे याद था, बस दिमाग से निकल गया। सच कहूं तो अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, या मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया। ऐसे बहाने हैं जो हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं, मैं करती हूँ अक्सर। हालांकि कई बार ये सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच भी होता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कुछ बातें सचमुच दिमाग से निकल जाती हैं।
1: तो चलो अभी गीत सुन लें।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

से कहता हूँ ये जवानों से उसी बुत की अदाओं के अफसाने हजार वो जो बाहू

0: तो आरती तुमने कभी कोई बहाना बनाया है? बताओ मुझे।
1: बनाए तो बहुत सारे बहाने, मैं अक्सर बना लेती हूँ बहाने, लेकिन अभी मैंने बनाया था कि हाँ यही वाला कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था इसलिए मैं उठा नहीं पाई।
0: ये जो है ना, फोन साइलेंट पे था, बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पे लगा था आजकल, क्योंकि जब कहते हैं कि फोन करना भूल गए तो ये बहाना तो हर कोई बनाता है, या हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई आ गया था।
1: बिल्कुल।

0: बहाना बहुत होता है। तो अब बहानों की बात चली है तो बताए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि बहाने यानी दो तरह के होते हैं। इससे हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे किसी से अगर हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं, और किसी से मिलना चाहते हैं तो बहुत बहाने हम निकाल ही लेते हैं। बस बहाने की ही बात है। मिलना ना हो तो हम बहाने बनाकर मिलने भी जाते हैं, ना मिलना हो तो बहाना बनाकर टाल देते हैं, और यही बता रहे हैं।
1: बिल्कुल। और एक हमारी श्रोता है जो लिखती है कि अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, वो लोग कहीं घूमने गए, उनकी देवर की लड़की इतवार को मेरे साथ मेरे ही घर पर लंच करना चाह रही थी अपनी माँ के साथ। इतनी गर्मी हो रही है, मैंने बचने के लिए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ। इस तरह से मैं कहीं गई भी नहीं और घर में इतनी गर्मी में किचन में काम करने से बच गई। ये बहाना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा, लेकिन अब उनको पता चल गया होगा, उन्होंने सुना होगा प्रोग्राम,
0: अगर वो रेडियो सुनते हैं उन्हें रेडियो पर बात
1: कि आपने बहाना बनाया था खाना बनाने बचने के लिए। तो
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो एक तो बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल और बहुत खर्च भी वहां पर था, और कई बार बजट डिस्टर्ब ना हो जाए तो कई बार बहाने बनाने पड़ते थे। जैसे एक बार बच्चों ने महंगी साइकिल लाकर देने को कहा तो मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरे मित्र ने अपने बेटे के लिए जो साइकिल खरीदी थी वो 15 दिन में ही टूट गई और वो यहाँ बन भी नहीं पाती है, इसीलिए फैक्ट्री में जाकर चीज लानी पड़ती है तो बहुत पैसे लग जाते हैं। और इसी तरह बहाना बनाकर बच्चों ने जब साइकिल मांगने की जो जिद थी वो छोड़ दी।
1: बहुत बढ़िया बात है। और हम इस समय एक थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम पर भी हमारे सखी उन्होंने लिखकर भेजा है। कहती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें चूसने वाले आम बहुत आते थे, उसमें जब हम आम खा चुकते थे तो गुठली को मेरी दादी एक टीन के डिब्बे में इकट्ठा कर लेती थी। बाहर छत पर रखा डिब्बा बहुत दिन तक रखा रहता था और गुठली इकट्ठा होती रहती थी, और फिर बरसात में भी मेरी भीगती थी। जब बहुत सी गुठली इकट्ठा हो जाती थी तो उसी डिब्बे में उबाल कर ठंडा होने पर गुठली को तोड़कर उसके बीज को नमक लगाकर खाते थे। यही हमारा मुहावरा बन गया कि मतलब आम तो खाए गुठलियां भी खाएं।
0: अचार में भी कई बार गुठलियों का प्रयोग किया जाता है और गुठलियों में बड़ा अच्छा तो स्वाद होता है, लेकिन बहुत मीठा स्वाद होता है। हमारे पुराने फिल्मी गीतों में भी तो सुनते ही गाना,
1: बिल्कुल सुनते हैं।
2: अभी न जाओ छोड़ कर,

फिर जी तोलूं, नशे के घूंट पी तोलूं, नशे के घूंट पी तोलूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के।

0: जो ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे कि जिंदगी की राह में जमा दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा न मानो बात का ये प्यार है गिला नहीं।
1: यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं।
2: दिल तो हमारा भी नहीं भरा अपनी सखियों से बातचीत करते करते, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें जाना होगा, इसलिए ये था इस कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत। लेते हैं विदा चंचल वर्मा
3: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
4: सखी सहेली।

सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही है जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था।

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओं,

0: बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जाना चाहेंगे, और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
1: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
0: अच्छा।
1: तो वहां पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफर है चेन्नई से वहाँ, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
0: अच्छा। हाँ। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से।
1: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वाली साहब का ट्रांसफर हुआ करता था हर तीन साल, यू नो, पोस्टिंग होती थी जो आईएएस ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज जो थी वहां से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं खत्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी, मुझसे तीन बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी, और मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूँगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास में। उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगु या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफर आया, तो मेरी वालदा कहने लगी, नहीं अभी मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं नहीं इजाजत दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे, वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से जमींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है, और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, फिल्में कर ले तो क्या हर्च है। तो मैं तो बहुत, मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के, कि प्लीज इजाजत दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था, वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहां से सिलसिला शुरू हो गया।
0: कुछ बोल याद है उस डांस के, जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
1: पूरे तो याद नहीं है। हिरवा का साकारो रन्नो चिन्नन्ना आगे।
0: क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत सुरीली भी है। अच्छा, वो फिल्म कौन सी थी?
1: उसका नाम था रोजलू माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज्ड, दे विच लिटरली चेंज माई लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे, आपको पता है जब आपका गाना आता है और खत्म हो जाता है, तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा, मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं, और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलकर देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया, दोबारा फिल्म एक चल रही है, कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे, उन्होंने कहा पॉसिबल है, क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड के बाद, एंड से पहले, मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज्यादा कामयाब हुआ था वो गाना।
0: क्या कहने।
1: और फिर इसके लिए मैं अपने डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हम हैदराबाद गए। तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो काफी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या हो रहा है बाहर? तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी, तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग, अच्छा अच्छा। तो फिर वो उन्होंने गुरुदेव जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम, एक डांस किया

0: है तो बहुत कामयाब हुआ और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुसलमान मुस्लिम लड़की होगी। बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो उर्दू बोल सकती है? तो उन्होंने कहा जरूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं, हालांकि है मुसलमान, केरला उस तरह मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं। तो बोले आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे, वो स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था, तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं? तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके जरिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहां मुलाकात हुई। तो कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट में और मेरी वालिदा थे, फिर चुप, कुछ खास कहा नहीं उन्होंने, ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुंचे तो इस चीज को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से, यू नो।
1: तो उसके बाद में आपको सीआईडी मिली?
0: सीआईडी पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो सीआईडी और प्यासा की बातें करें उसके पहले हम वेदर ही चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी।

0: वह बहुत ही खूबसूरत गाना है और खास रूप से सचिन दा का जो म्यूजिक है उसका जवाब ही नहीं है। आप याद है जब आपने गुरुदत्त साहब के डायरेक्शन में पहली बार वो कैमरा फेस किया था, हिंदी की अगर हम बात करें कौन सा दृश्य था, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, पहले तो सीआईडी थी, उसके डायरेक्टर थे राज खोसला। तो एक महीने दो महीने तो सिर्फ सीआईडी की शूटिंग हो रही थी, उसके बाद उन्होंने साइमल्टेनियसली दो तीन महीने के बाद प्यासा की भी शूटिंग शुरू हुई थी। और दोनों डायरेक्टरों में मैंने फर्क बहुत पाया, क्योंकि राज खोसला जो थे वो अच्छे डायरेक्टर थे फिल्मों में के लिए, मगर नए आर्टिस्ट को हैंडल करना उनको इतना नहीं अच्छा आता था। हालांकि गुरुदत्त जी तो वो आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है। तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और राज खोसला थे कि ये ऐसे करना है, कर दिया, अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए, और चूंकि मैं नई नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी। यहाँ गुरुदत्त जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है लगता है, क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे।
0: गुरुदत्त साहब हाँ को कैसा डायरेक्टर मानते थे?
1: डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या क्या किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, उस सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ।
0: उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है अपना, कौन सा सीन?
1: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के। ये जैसे दिल की आवाज है, और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आपकी कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा।
0: आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाने थे?
1: हाँ, एक्सप्रेशन लाने थे, और उसमें तो मैं कहूंगी एक्सप्रेशन बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज एनहांस हुई थी, मतलब और बढ़िया दिखती थी।
0: आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज के फूल का, ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग
1: हाँ
0: है, और इसकी मेलोडी जो है आज तक
1: हाँ
0: बहुत दिल को छू लेने वाली।
1: बिल्कुल,
0: क्यों नहीं गाना सुना जाए?
1: बिल्कुल, क्यों नहीं।

0: हम।
1: वेदा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ, तो आपकी क्या राय है इसमें?
0: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पीछे चलेगी नहीं।
1: तो आपने कह दिया?
0: हाँ, मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा, बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज्यादा हेवी है और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हेवी। तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं। तो वो इत्तेफाक से वो हो गई, तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत तो दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पीछे नहीं चलने वाली,
1: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
0: नहीं, मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद चौधरी के चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म, फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहेब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया अप्रिशिएट और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
1: अच्छा वेदा जी, साहेब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है, डायरेक्टर के रूप में नाम आता है अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शैडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है।
0: अभी देखिए अबरार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना, तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में, क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया जैसे चंद सीन्स थे जहाँ गुरदत्त जी नहीं थे तो उसमें गुरदत्त जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे, मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर के अबरार साहब और गुरदत्त जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए इस तरह से किया जाए।
1: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी?
0: बिल्कुल, जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया बंगाली नॉवल से

0: मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं। तो गुरुदेव जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल। तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा। तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ? तो बोले नहीं ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही, एक एक मैच्योर औरत का रोल है। जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पती, जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें? नहीं, बोले वो नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं, कुछ तो कोशिश तो करते हैं। तो उन्होंने वैसा गेटअप देके स्टिल फोटोग्राफ्स लिए। लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे, वो हमने सब ने स्टिल देखी। मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं गुरुदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप यू नो यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। सो
1: इस फिल्म का शुमार भी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो?
0: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ उसके बाद गुरुदेव जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो बात खत्म हो गई। तो जब अब्रार साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आके ने जो देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करें। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी। तो गुरुदेव उन्होंने जाके गुरुदेव जी को बताया तो उनको ताजुआ भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं, चौदवी के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है, टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप? तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैंने कहा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जबा का रोल डिफरेंट है, डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आप सोच लीजिए क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं अब्रार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूंगी, तो इसलिए मैंने किया।
1: तो इसका जिक्र चला है क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो?
0: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी। मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि ना जाओ सैया छुड़ा के बैया।

0: अभी इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौधरी का चांद, एक बड़ी वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में, तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बतौर, जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, मायने रखती है, खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के।
1: नहीं, क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरुदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिल और दिमाग में गुरुदत्त जी इज मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर। तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करती है, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ, हाँ इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर गुरुदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे, जैसे सीआईडी बनाए, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतने सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूंगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं, अगर सादिक बाबू करेंगे तो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा, यू नो, और खासकर वो लखनऊ के हैं उस तरफ, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरुदत्त जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को।
0: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
1: नहीं, मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय ले जाए, अगर कोई गलत ऐसा लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं, एक चीज होती है फिल्मों में उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा।
0: देव साहब के साथ में कैसी ट्यूनिंग थी आप?
1: देव साहब के साथ क्योंकि पहले उस सीआईडी में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बहुत ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, मगर वेरी नाइस वेरी डिसेंट और बहुत अच्छा था उनके साथ।
0: उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का?
1: हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में, तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर के आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो यूनिट पहले जा चुका था, तो देव मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे, देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चलाऊं, तो ठीक है। एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगी, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए। नहीं, एक तो फॉग है, मैंने कहा हाँ फॉग तो है मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है, तो बोले मैं चश्मा लगा, तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया, तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया, तो मैंने कहा अब क्या होगा, तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेडरेसर को पीछे बैठने दो और तुम मुझे बताते रहना राइट में लेफ्ट में जाना है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। ओह, मैंने कहा भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता। मैंने कहा अब तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं

0: जा सकते और आगे तो जाना ही है। और वो जो ट्रक्स आ रही हैं, तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा। अच्छा, आहिस्ता चलाइए। और कोई और रास्ता ही नहीं था। ओ, इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे तो एक घंटा देर पहुंचे। तो वहां यूनिट वाले परेशान, और विजय आनंद जो थे, गोल्डी वो डायरेक्टर थे, वो पहुंचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को? तो मैंने कहा, विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है, और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुंच गए। तो दैट वाज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था।
1: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गाना याद करिए आप।
0: खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खुला

मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली, के उनको तो बुलाओ, ओ हो,

0: आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया जान।
1: गोविंद जी, गुरली साहब का भी जिक्र है और इसके पहले हमने बात की गाइड की और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्म है। वैसे गुरली साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना था?
2: या, या, या। आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था। उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया तो वो एकदम परफेक्ट था। तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहां शूटिंग कर रहे थे, कुछ खंडर थे वहां पर, वो ऊंची सी दीवार थी कुछ 6-7 फुट की और ज्यादा चौड़ी भी नहीं थी और बीच में एक गैप था। तो वो कहने लगे आप इतनी खुश और इतनी, मतलब लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, मगर खुश हैं। तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जप कर जाती हैं। तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बापरे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले 2-4 बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना। मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है।

0: उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं। वैरा जी, उसमें आपने रोजी का एक करेक्टर किया था, और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रोजी एक ऐसा करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी ट्रेडिशनली भी, उसको तोड़ा उसने, वो विद्रोही उसमें रिबेलियस है। तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता है अभिनेत्रियां डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी।
1: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई, मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था। क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने सीएडी का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था। फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है। वो कैरेक्टर वैसा नहीं, तो वो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी। रोजी का कैरेक्टर रोल लिया, मेरे दूसरे डायरेक्टर्स उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं। मैंने कहा क्यों? तो बोले एक तो रोजी नाम है, और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है वॉट एवर, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है। फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है। और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनालिटी के हिसाब से लिखी जाती है, ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम ऑब्वियसली। तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, तो सीता का क्या होगा। तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्लीप वॉकर चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया, जो तो इस जन्म में आप कह रहे हैं सीता को तो हर वक्त सीता के राम के साथ ही होना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट उनको अच्छा नहीं लगा, चुप हो गए। फिर भी मेरे ख्याल से गलत ही, आपकी गाइड जो है वो चलेगी नहीं और आपको बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा। मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा।
0: और दोनों ही फिल्मों ने इतिहास रचा,
1: एग्जैक्टली
0: आपको गाइड के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला,
1: बिल्कुल सही
0: है। कमल के लिए भी मिला। कभी आपको ऐसा लगा कि ये दो फिल्मों को अगर हम छोड़ दें, किसी फिल्म में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, कभी अखरा कि नहीं इसके लिए भी मिलना चाहिए था मुझे?
1: मुझे अपना रोल मुझे जीने दो में बहुत अच्छा लगा था, वो भी कंप्लीट कसम का रोल था, उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के, कि एक तवायफ है उसको किडनैप किया जाता है, फिर उससे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो बच्चे की खातिर। सो देयर द इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन थे, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ, इट्स ओके।
0: डाकू की समस्या पर वो फिल्म थी,
1: हाँ।
0: सुनील दत्त साहब के साथ में,
1: हाँ जी।
0: और सुनील दत्त साहब के साथ में आपने खूब दौरे वाले भी किए, फौजियों के साथ में बीच में जाकर के खूब काम किया, उनके साथ में, उनके ट्रूप के साथ में जाकर,
1: हाँ जी, हाँ जी। तो उनका था एक अजंता आर्ट्स ट्रूप एंटरटेनमेंट समथिंग ऐसे तरह का, तो हम लद्दाख गए थे उनके साथ, और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहाँ भी जाते जवान थे वहाँ, बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी होता था, यू नो। और काफ़ी प्रोग्राम वगैरह हमने किए, फिर बांग्लादेश वॉर के बाद वहाँ भी गए थे एक ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए।
0: तो ऐसा है कि कुछ देर पहले हमने मुझे जीने दो की बात की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है, उसका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो?
1: उसमें जयदेव जी का म्यूजिक था,

0: एक और आपकी बड़ी ऑफबीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा और शेर, और अमिताभ बच्चन साहब खासतौर से जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं, उसमें उनको गूंगा बना दिया गया और उसमें जयवंत भी थे आपके साथ में, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रेशमा शेरा भी बनी, उसके आउटडोर्स खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मजा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे, और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी सात हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी, और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं और सब कहते थे थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से। तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो हैं होंगे ही, और जब पैकअप हो जाता था कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके एक दो शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो भागते हैं, तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहा था तो बैठे गप्पे मार रहे हैं, मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो बोले कैसे, एक तो डायलॉग ने बेचारे का तुम किस हिसाब से कह रही हो, मैं कह नहीं, इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है, अगर इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डायलॉग साथ में, और मैंने कहा उसकी बाद उनकी आवाज इतनी अच्छी है, जब वो टॉकिंग डायलॉग हमें इन रोल मिल जाएगा मेरे ख्याल से डू वेरी वेल। तो फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका।
0: मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से बेहदा जी हैं। और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है और उनकी माँ का किरदार

0: कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको, वो जो शुरू में वो जो बात होती थी उस समय, बाद में तो सब कुछ बदल ही गया है पूरा, उन्होंने साबित भी कर दिखाया, लेकिन आपका अनुभव कैसे रहा उनके
1: साथ? मेरा अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है आज तक, रेशमा शेरा से लेकर आज तक। और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव जो भी कहिए, उनके बच्चे जया सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है। और वो इतने ज्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि बहुत बड़े स्टार हो गए जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही अच्छा है उनका।
0: दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का?
1: हाँ, रेशमा और शेरा में हम न्यू कवर थे, एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन मतलब अमिताभ की वालदा सेट पे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ, मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रीटेक की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहां आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहाँ बैठी आप सर पे, आप जरा बाहर ताजी हवा खाइए। फिर कहने लगी तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो? मैंने कहा क्यों, तुम कस के मारे? तो मैंने कहा देखिए अगर मैं एक कस के मारूं तो वो शॉट खत्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक, फिर छह तमाचे पड़ेंगे उसको। तो हंसने लगी, बोले नहीं नहीं अच्छा मैं जाती हूँ। फिर मैंने सुनील दत्त को कहा डायरेक्टर को, देखिए अगर तमाचा पड़ने से पहले कोई गलत पोजीशन मेरी या डायलॉग गलत बोल दिया कुछ भी हो तो पहले काट दीजिए, बेचारे को क्यों इतने तमाचे मारूं, पहले तो आंटी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया क्या कस के नहीं मारे, बाद में एक दिया मैंने बहुत कस के।
0: यहाँ हम रेशमा और शेरा जिसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है, ये कोई गाना हो जाए रेशमा और शेरा का?
1: रेशमा कैसे, वो एक मीठी सी चुबन, एक हाँ बहुत मीठा गाना, बहुत अच्छा है। एक मीठी सी चुबन, एक ठंडी सी अगर,

0: जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, वे बियॉन्ड इट्स टाइम, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. कभी वो रोल देख के ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, यू नो, जस्टिफिकेशन था. और एक था, दे वर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है. और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज हम अपने लिए करना चाहते हैं. तो रोजी का पैशन था डांस करना, वो उसको मार्को से नहीं मिलता, तो उसको एंकरेजमेंट राजू से मिलता है. फिर एक पॉइंट आता है जहां सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है, कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं, अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ. राजू कहते हैं, नहीं अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है. ये कहती है, नहीं मुझे बच्चे चाहिए. अरे बच्चे भी हो जाएंगे, इसकी क्या. उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना. वो कहते हैं, कहाँ से जिम्मेदारी लें शादी बच्चों की. सो हर एक मौके पर, कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है. अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती है, वो बन जाती है, फिर कहती है, नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड. फिर उस वक्त राजू कहता है, नहीं अभी कहां सेटल होंगे. तो ये चीज जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था. सो यू नेवर फील जब आप मूवी देखते हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ए बैड पर्सन. नो, नोबडी इज बैड एंड नोबडी इज गुड.
0: देव साहब के साथ में और जो आपके भाव, क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ और. आपकी मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में, कैसा है उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खास उससे. एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, तो एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं, कैसे थे?
1: जैसे मैंने कहा, वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके. तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए, तो वो उनकी पहली डायरेक्टरल डेब्यू डायरेक्टरल मूवी थी, तो कहने लगे, मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा. मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कर लेंगे.
0: इतना हक,
1: हाँ हक जता रहे थे जैसे. तो बड़े कोऑपरेटिव, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती. जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफ़ी केयर लेते थे बहुत अच्छी तरह से. तो ही इज वेरी नाइस एज अ प्रोड्यूसर,
0: और एक एनर्जी से भरे हुए
1: बेहिसाब. मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ, क्योंकि वो कभी थके या कभी, मैं तो कहती हूँ भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर लें, तो वो तो कभी नहीं कहते थे. वो उतने, जब खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे, तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया, ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़ भाग दौड़. फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे, तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताजी शर्ट पहन के आते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के. फिर वो हुआ, फिर उसको सुखाते थे, वो कहते थे, मैं कहते दे आप हमेशा ऑल द टाइम यू फुल ऑफ एनर्जी, सो यू आई विल कॉल यू एवर रेडी बैटरी.
0: अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है, और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं, और बेशक वो सफलता मिले ना मिले, लेकिन वो कारवां नहीं रुका है, उनका जज्बा अभी भी वैसे ही है, और फिल्में बनाए जा रहे हैं. तो अभी उनसे कभी फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है?
1: नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है, हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं. मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं, वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है. सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जो जौहर थे बेचारे, उनसे, उनकी फैमिली से, वैसे भी काम किससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनकी फिल्मों में तो यश जौहर के काम ही क्या. हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जीनियो दो में थे प्रोटेक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है.

0: है, वो हमेशा मिलते रहे हम।
1: दोस्तों वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें। आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया, लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी। भूलिएगा मत, अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम। हम आपको बता दें, वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

इस समय अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी। हमारे प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युव वाणी।

युवाणी सुनने वालों को आशा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी हम चर्चा करने वाले हैं बिरसा मुंडा शहादत दिवस। साथियों, प्रतिवर्ष 9 जून को महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोक नायक बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह दिन विशेष मनाया जाता है। उनका निधन 1900 में मात्र 24 वर्ष की आयु में रांची में जेल में हो गया था। साथियों, बिरसा मुंडा को अक्सर धरती आबा पृथ्वी के पिता के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और दमनकारी सामंती जमींदारों के खिलाफ महान विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका संघर्ष जल, वन और भूमि पर आदिवासी जो अधिकार है उनकी रक्षा पर केंद्रित था। उनके लिए जल, जंगल, जमीन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। प्रकृति उनसे बहुत अच्छे से संबंधित थी। उनका ये कहना था कि ये सभी जो चीजें हैं जिस जो हमें सीधे सीधे प्रभावित करती है, चाहे वह जल है, वन है, भूमि है, ये सभी जो जमीन है उन पर जो है किसी मानवीय जो है अधिकार नहीं होना चाहिए किसी का भी, वह सभी के लिए है। साथियों, उनके विद्रोह ने अंग्रेजों को 1908 में जो है छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम लागू करने के लिए मजबूर किया, जिसने स्वदेशी जो अधिकार है उनको जो है कुछ मान्यताएं दी और आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया। उनकी शहादत दिवस पर रांची के बिरसा मुंडा जेल पार्क में विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाती है। जिस कोठरी में वे शहीद हुए थे

हो गया। उन्होंने कुछ ऐसे आंदोलन किए जब वो युवा थे, तो सामने वाले जो है वो इतने जो है प्रभावित हो गए, वह उनको जेल में डाला गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जो है इस दिवस को रांची में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। धरती आबा मतलब धरती को जो है वह धरती के पिता, पृथ्वी के पिता के रूप में उन्हें पूजा जाता है। किस तरीके से जो है धरती उनके लिए इतनी विशेष थी, और आज जो युवा है वह यह जाने कि ये प्रकृति हमसे कितनी जुड़ी हुई है, यह प्रकृति हमसे कितनी संबंधित है, यह उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। साथियों, हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया की ओर, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत फिल्म हम साथ साथ हैं से। अब हम चर्चा करने वाले हैं, समय प्रबंधन एक मनुष्य के लिए जरूरी है। साथियों, आज का जो मानव है, आज का जो मनुष्य है, इस दौड़भाग वाली जिंदगी में बहुत कम समय है जो खुद के लिए निकाल पाता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग है, सब काम करने हैं, तो उसमें प्रबंधन जो है समय का होना बेहद आवश्यक है। भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय और उनको करने के लिए क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो 24 घंटे हैं उसको जो है किस तरीके से अपने कार्यों में बांटना। मैंने या आपने काफ़ी बार ये चीज़ सुनी होगी, किसी को कुछ कहते हैं तो समय ही नहीं मिलता, समय नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम सोचें कि इतने महान लोग जिन्होंने जो है कई किताबें लिखी है, इन्होंने जो है वह अंतरिक्ष पर यात्राएं की है, तो समय तो उनके पास भी ये 24 घंटे ही थे, लेकिन उन्होंने इस 24 घंटे का जो है वह उपयोग कैसे किया, तब उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर कदम रखा। और हम उन 24 घंटों का किस प्रकार से जो है उपयोग कर रहे हैं, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो हमारा लक्ष्य है हम उसके लिए अपना समय तैयार करें। समय प्रबंधन वही है कि हम हमारे जरूरी कार्यों को सभी और बराबर समय दें। साथियों, समुचित समय प्रबंधन से जो है दक्षता मिलती है, उत्पादकता बढ़ती है और कार्य सही समय पर पूरे होते हैं। समय प्रबंधन के लिए स्वयं का मूल्यांकन करना आवश्यक है। हो सके तो एक डायरी जो है उनमें अपनी बातों को लिखें। इससे आपको स्वयं को पता चलेगा कि आप कितना समय उपयोगी कार्य को देते हैं और कितना समय अनुपयोगी और बेकार काम को देते हैं। और हम ये कह सकते हैं आज के समय में जो ऐसे भी लोग हैं जो घंटों काफ़ी ऐसे समय जो है वो मोबाइल में दे देते हैं, अच्छे काम के लिए नहीं, यूं ही देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए, और भी जो है वह टीवी में दे देते हैं लेकिन अपना जरूरी कार्य नहीं करते। तो उसके लिए डायरी बहुत ही आवश्यक होती है कि हम अपना समय का जो है आकलन करें कि हम कितना समय उपयोगी कार्य को देते हैं और कितना अनुपयोगी।

कार्य को, किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाएं, प्लानिंग करें और उसके अनुसार ही समय पर कार्यों का निष्पादन करें। साथियों, यदि हमें कहीं जाना है और कुछ काम को करना है तो उसके लिए एक सूची बनाएं जो आपने तय किया है, उसके अनुसार उसी क्रम और समय अनुसार अपने कार्य को करते जाएं। योजना बनाते समय अपने कार्यों की प्राथमिकता स्वयं ही तय करना होगा कि आपको किस काम को पहले करना है और किस काम को बाद में। काम करने के दौरान उस कार्य का आकलन भी करते जाएं कि जैसा कि आपने सोचा था वैसा यह काम हो रहा है या फिर उनमें गलतियां हो रही है या फिर अगले कार्य में किस प्रकार से सुधार करना है। लेकिन साथियों, इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलतियां नहीं करेंगे। यदि आपसे गलती हो जाती है तो उसे तत्काल सुधार करें। साथियों, ये चीज हमेशा ही ध्यान रखें कि समय बहुत ही मूल्यवान होता है, वह कभी वापस नहीं आता। जिस तारीख को, जिस समय हमें जो काम करना है उसमें जो है उसको करना ही है। अब आप कैसे भी उसके लिए समय निकालें, लेकिन यह भी है यदि आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं, पहले से सोचते हैं, तो शायद उस कार्य को जो करने की दक्षता बढ़ेगी। अगली बार जब भी आपको दूसरा काम करना होगा तो आपके में वह आत्मविश्वास आएगा और वह वास्तव में बहुत ही बेहतर होगा। ये याद रखें कि आलस्य समय प्रबंधन का घोर दुश्मन है। हम भली सूची बना लें, डायरी लिख लें, लेकिन यदि हमें आलस्य आ गया तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये ध्यान रखो कि आलस्य जो है वह नहीं होना चाहिए, ये समय प्रबंधन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आप काम के दौरान आलस्य करते हैं, थोड़ा सा भी लापरवाह हो जाते हैं, तो आपकी बनी बनाई योजना धरी की धरी रह जाएगी, वो वहीं की वहीं रह जाएगी। इसीलिए किसी भी कार्य को जो है पूरा करने के लिए मन लगाकर और सतर्कता पूर्वक करें। साथियों, समय के सदुपयोग के लिए सबसे पहले जो है समय सारणी जरूर बनानी चाहिए। अपने समय को सही ढंग से उपयोग करने के लिए एक पक्की समय सारणी टाइम टेबल होना चाहिए। जैसे स्कूल के विभिन्न विषयों के लिए निर्धारित समय दिए जाते हैं, वैसे ही हम मन में ये याद रखें कि हमें कौन से काम कब करने हैं। खाली समय का जो है प्रयोग अच्छे से करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हम हर समय काम में ही जुटे हो। यदि काम से छुट्टी हो या कई दिन ऐसे भी होते हैं कि हमारे पास में कुछ जरूरी काम नहीं होता, तो उन दिनों को और खाली समय को सदुपयोग करना जो है जरूरी होता है। उसको कैसे हमें सदुपयोग में लेना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी जो है काम को छोड़कर अपने खुद के मनोरंजन के लिए खेल भी खेलना चाहिए, कुछ ऐसे भी काम करने चाहिए जो हमें हमारे कौशल के लिए, हमें जो है हमारे कौशल को बढ़ा सके, जो हमारी रुचि को, जैसे संगीत सुनना, मेहंदी लगाना, आर्ट एंड क्राफ्ट करना, यह चीज़ें जो है हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाती है। साथियों, ये आज के समय में जरूर ध्यान रखें, समय प्रबंधन के लिए भी ये जरूरी है कि रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठें। रात की अच्छी नींद पूरे दिन की ऊर्जा का स्रोत होती है। अच्छी नींद का होना बेहद जरूरी है। अगर हम अच्छे से सोएंगे तभी अगले दिन एकदम ताज़ा दिमाग के साथ में, अच्छे समय के साथ में, अपने समय के साथ में अच्छे से उसका उपयोग कर पाएंगे। इसीलिए यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि सोने में समय व्यर्थ होता है, बल्कि 7 से 8 घंटे की नींद जो है वह शरीर और दिमाग दोनों को तंदुरुस्त रखने के लिए जरूरी है। बाकी हम जागते हुए समय का जो है उपयोग करते ही हैं। साथियों, सोशल मीडिया पर जो है वह ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। आजकल देखा जाए तो विशेष विद्यार्थियों के लिए सोशल मीडिया का जो है अत्यधिक उपयोग हो रहा है। वह जो है ये ठीक है कि उनमें पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन ये जो ज़्यादा उपयोग है वो उनकी पढ़ाई और उनके कैरियर को उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। थोड़ा पढ़ लिया अब फ़ोन देख लेते हैं, थोड़ा ये काम कर लिया अब फ़ोन देख लेते हैं। यह जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी को भी कम करते हैं। पहले जो ऐसे बच्चे हुआ करते थे वो थोड़े बहुत जो है वह घर में रहने के बाद में बाहर खेलते थे, छलांग लगाते थे, कूदते थे, उनसे उनकी जो है वह फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही एक्टिव रहती थी। लेकिन अब जो है वह मोबाइल एक प्रकार का जो है
उनके समय को तो बर्बाद कर ही रहा है। बार बार फोन देखना एक आदत सी हो गई है कि अब थोड़ा काम हो गया अब फोन देख लेते हैं, थोड़ा हो गया अब ये काम कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया से, फोन से थोड़े दूर रहकर अपने समय को बचाएं और यह समय खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लगाएं। और इसी तरीके से यदि हम समय प्रबंधन करते हैं तो बहुत अच्छे से हम अपना जीवन जी सकते हैं। साथियों, हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया की ओर, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बाग को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी

0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: साथियों, अब हम चर्चा करने वाले हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी हाँ साथियों, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका अर्थ है यदि आपका मन पवित्र है, शुद्ध है, तो आपको पुण्य कमाने की या फिर ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास सब कुछ उतना ही पवित्र होता है। यह बात एकदम सही है, क्योंकि यदि साथियों, ये तो सीधी सी बात है कि हम बाहर जा रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन वहीं हमारे मन में यदि झूठ है, कपट है, चालाकियां हैं, यह सब चीज़ें हैं, तो फिर उस जगह जाने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान जो है, भगवान की प्राप्ति जो है वह उसी मन में होती है जहाँ पर हमेशा प्योरिटी रहती है, शुद्धता रहती है। आंतरिक शुद्धता का जो महत्व है वह अलग ही होता है। बाहरी दिखावे या केवल तीर्थ स्थान जो है उनमें स्नान करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके विचार और आपकी नीयत का साफ होना। हमारे विचार कैसे हैं, हम हमारे घर वालों के साथ, विशेष हमारे घर के बड़ों के साथ, जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ में हमारा व्यवहार क्या है, यदि उनके साथ में हमारा व्यवहार अच्छा है, यदि वो हमसे खुश हैं, तो वो हमारा घर जो है किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। क्योंकि जहाँ पर बड़े बुज़ुर्ग जो है हंसते हुए दिखाई देते हैं, वो घर एक स्वर्ग जैसा है। और जहाँ पर बड़े बुज़ुर्ग कहाँ पर हंसते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पर जो युवा पीढ़ी है वह उनका कहना मानती है, उनके जो है बातों का आदर करती है, उनका मन साफ है, आने जाने वाले जो लोग हैं वह उनसे खुश हैं, वह कभी भी किसी चीज़ को या फिर किसी दूसरे लोग को जो है प्रताड़ित नहीं करते हैं, वह हमेशा ही जो है अपनी बातों में, अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क है, सजग है, तो उनका मन साफ है। साथियों, यदि मन में छल कपट नहीं है, तो हम यदि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो यह मानना बिल्कुल सही है कि गंगा स्नान के समान ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह चीज़ उन्हीं के लिए कही गई है जहाँ पर यह चीज़ मान सकते हैं हम कि उनके जो है मन साफ हो, उनका शरीर जो है एक आदर्शवादी हो, उनमें किसी प्रकार की जो है वह झूठ नहीं है, वह इस दुनिया को जीने के लिए किसी चालाकियों का उपयोग नहीं करते हैं। हम देखते हैं आज की दुनिया में साथियों अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और जब अलग अलग क्षेत्र में हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया किस तरीके के हैं, लोग कैसे हैं। लेकिन यह भी बात एकदम कटु सत्य है, यदि आप अच्छे हैं तो आपके साथ में हमेशा अच्छा ही होगा, यदि आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे। इसलिए खुद को, मन को जो है साफ रखना, शुद्ध रखना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम यह चीज़ें कर लेते हैं तो हमें किसी दूसरे तीर्थ स्थान पर जाने की, या फिर हम ये सोचते हैं स्नान कर कर हम जो है वह हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो इन सभी जो है ढकोसलों को करते हैं, इन सभी कामों को करते हैं, लेकिन वो उनके मन में खूब मैल भरी हुई है। ऐसे लोगों को कभी भी जो है पुण्य नहीं मिलता है, वह भगवान की प्राप्ति उस समय तक नहीं कर पाते जब तक वो साफ मन से एक जो है अपने घर के भगवान को जब तक वह नहीं पूजेंगे, तो साफ मन से उन्हें वो भगवान भी नहीं मिल सकते। मानव जीवन को अच्छे से जीने के लिए ये आवश्यक है कि हम हमारे जो है मन का शुद्धिकरण करें, हम हमेशा ही जो है अच्छे से रहें, हमें किसी प्रकार की कोई गलत चीज ना हो, गलत हमारी विचारधारा ना हो, गलत हमारे कोई गुण ना हो। और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जो है हमसे कभी कोई गलत काम वह ना करवाए, ऐसी कोई परिस्थिति ना बने कि हमें जो है गलत काम करना पड़े। ऐसे यदि हम जी रहे हैं तो हमारे जो है भगवान से सीधे सीधे संबंध बनाने में कोई भी नहीं रोक सकता। यही जो है जरूरी है साथियों, यदि आपका मन पवित्र है, शुद्ध है, तो आपको पुण्य कमाने या ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी तीर्थ स्थान पर जाने की

आवश्यकता नहीं है, आपके पास में सब कुछ उतना ही पवित्र है जितना कि गंगा। साथियों, हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया की ओर, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत पिन हाँ मैंने भी प्यार किया से। अब हम चर्चा करने वाले हैं स्किल इंडिया मिशन के बारे में। स्किल इंडिया मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे देश के युवाओं को उद्योग से संबंधित और भविष्य के लिए तैयार कौशल से सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह शुरू किया गया है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन संचालित होता है और इसका केंद्रीय प्रबंधन तकनीक आधारित स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान स्किल इंडिया कार्यक्रम व्यापक कैरियर विकास प्रदान करने के लिए कई कौशल विकास प्रयासों को जो है एकीकृत करता है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यह योजना राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के अनुरूप युवाओं को निशुल्क अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन पुनः कौशल विकास की शिक्षा माध्यम से प्रदान करती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 14 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति जो है प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता और वजीफा साझाकरण DBT के माध्यम से प्रदान करके नौकरी पर प्रशिक्षण और शिक्षुता को बढ़ावा देती है। जन शिक्षण संस्थान, जिसका लक्ष्य निरक्षर, नव साक्षर और स्कूल छोड़ने वाले जो लोग हैं उनके लिए व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न आय वाले जो शहरी क्षेत्र है उनमें जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। यह जो है वह ऐसी महिलाएं जिन्होंने स्कूल छोड़ दी है किसी कारणवश, लेकिन यदि वो अपना खुद का व्यवसाय चलाना चाह रही है, व्यवसाय करती है और उनका जो है कौशल है उनमें और ज़्यादा कैसे बढ़ावा हो सके, उसके लिए जन शिक्षण संस्थान JSS जो है वह भी है। और PM विश्वकर्मा योजना, यह योजना चिन्हित जो है कुछ ऐसे व्यवसाय है जैसे कारीगर है, शिल्पकारों को जो है बिना किसी गारंटी के ऋण, उपकरण किट और बाजार संपर्क की सहायता प्रदान करती है। यह जो है उनको ऐसी कुछ योजनाएं

देते हैं जिनसे उनके कौशल में और ज्यादा वृद्धि हो सके। साथियों, स्किल इंडिया मिशन जो है इसकी और भी विशेषताएं हैं, और भी लाभ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, हम चर्चा कर रहे थे स्किल इंडिया मिशन के बारे में। यदि बात करें इसके लाभ और विशेषताओं के बारे में, तो इसके जो प्रमुख विशेषता है वह यह है कि यह भविष्य के लिए व्यवसाय तैयार करती है। पारंपरिक व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ अब जो है पाठ्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, जो है हरित ऊर्जा और भी ऐसे जो है उभरते क्षेत्र हैं उनको कवर किया जा रहा है। समावेशी सहायता भी इसके अंदर शामिल है। विकलांग उम्मीदवार के लिए आवास, भोजन, सहायक उपकरणों सहित विशेष प्रावधान सीधे कौशल विकास ढांचे में शामिल किए जाते हैं। साथियों, कौशल विकास के लिए जितने भी इच्छुक व्यक्ति है वह स्थानीय प्रशिक्षण केंद्र में खोज करने वाले या शिक्षुता एवं रोजगार के अवसर तलाशने वाले स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। विशिष्ट ITI बुनियादी ढांचे के उन्नत या फिर व्यापक संस्थान पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले जो भी इच्छुक लोग हैं वह आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। साथियों, इसके लाभ में यह भी है कि केंद्रीकृत सत्यापन भी है। सभी प्रमाण पत्र राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप है जो डिजी लॉकर के साथ एकीकृत है। स्किल इंडिया मिशन भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसे देश के युवाओं को उद्योग से संबंधित और भविष्य के लिए तैयार कौशल से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अधीन संचालित होता है और इसका केंद्रीय प्रबंधन तकनीक आधारित स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से किया जाता है, ताकि वर्तमान स्किल इंडिया कार्यक्रम व्यापक कैरियर विकास प्रदान करने के लिए ऐसे लोग जो है जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपने कौशल को बढ़ावा देना चाहते हैं, कुछ न कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए अलग अलग योजनाएं हैं और वह इन योजनाओं के माध्यम से अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। साथियों, हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। प्रसारण हो रहा था रेडियो गोल्डन सिटी से। हमारे प्रसारण FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर उपलब्ध हैं।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद शाम 6:05 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान पाठ। उसके बाद 6:15 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

6:30 पर होंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद 6:40 पर होगी जिले की चिट्ठी और 6:45 पर सुनिएगा जयपुर केंद्र से ही राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

शाम 7 बजे स्टूडियो से सुनिएगा सजीव कार्यक्रम किसान वाणी। उसके बाद 7:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे बांसुरी वादन राग झिंझोटी। कलाकार हैं पंडित राजेंद्र प्रसन्ना।

शास्त्रीय संगीत के बाद आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का रात्रि 8 बजे। 8:30 का कार्यक्रम रहेगा समय सुगम संगीत के लिए। और 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या।

श्रोताओं, रात्रि 9:15 पर एक बार फिर सजेगी फिल्म संगीत की महफिल, आनंद लीजिएगा। और राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 9:30 पर। शामे गजल आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे। और 10:30 पर एक बार पुनः फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, आपसे लेकर रात्रि 11:10 तक आपको रहना है हमारे साथ और सुनने हैं रेडियो गोल्डन सिटी के कार्यक्रम, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम।

श्री राम की प्रभुता असीम है, ऐसा समझकर गोस्वामी तुलसीदास अपने को उनका गुणगान करने में सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अपनी विनयशीलता के अनुरूप गोस्वामी जी अपने को न तो कवि कहलाने योग्य मानते हैं, न ही सच्चिदानंद भगवान के गुणगान में चतुर और सक्षम पाते हैं। फिर भी मति अनुरूप राम गुण गावं। अपने पूर्ववर्ती बुद्धिमान प्राकृत कवियों का, जिन्होंने अपनी समर्थ भाषा में प्रभु चरित्रों का वर्णन किया है, तथा उनका भी जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सबको नमन करते हुए तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा का आरंभ किया है।

एहि प्रकार बल मन ही देखाई करिहौं रघु।

0: दर हरे सुजस
1: चरण कमल बंदा तिन्ह तेरे खुद बहु सकल मनोरथ मेरे।

सुर सद सम सब कहित होई। राम सुखी रति बनित भदेसा, अस मंजस अस मोहि अदेसा। उम्हुरी कृपा सुलभ सुमोरे सिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान पाठ, प्रसारण हो रहा था रेडियो गोल्डन सिटी से। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

श्रोताओं, इस भक्ति रचना के साथ ही अब आज का वंदना कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम रेडियो गोल्डन सिटी से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर उपलब्ध हैं। शाम के ठीक 6:30 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वीबी जीराम जी के तहत किसी भी राज्य के बजट प्रस्ताव में कोई कटौती नहीं की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। और देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में 468 अरब डॉलर से बढ़कर 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जीराम जी के सुचारू परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार ने 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये प्रस्ताव रखा है। ये अधिनियम 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में इसकी घोषणा की। इसके बाद प्रेस वार्ता पर उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के बजट आवंटन में कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि पिछले साल की तुलना में बजट में 40% की बढ़ोतरी की गई है। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है।
1: किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे, इसका कम हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही, पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से, तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखने के सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधन लगाए गए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात पर और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें NTA के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेक राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि CBI नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। जयपुर के खोनागोरियान क्षेत्र में आज एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 3 श्रमिकों की मौत हो गई, वहीं 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये फैक्ट्री एक रिहायशी इलाके में

0: अवैध रूप से चल रही थी। हादसे के समय वहां 8 लोग मौजूद थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आग लगने के बाद वहां रखे गैस सिलेंडर में भी विस्फोट हो गया, जिससे स्थिति अधिक भयावह हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। थानाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
1: हमें सूचना मिली कि आग लगी हुई है, एक मकान में आग लगी है, तो हमने तुरंत मौके पे पहुंचे। मौके पहुंचकर यहाँ पे आसपास के लोगों की मदद लेकर के पानी के टैंकर लगा करके तुरंत आग बुझाने का काम किया, और उसमें करीब 8 लोग इंजर्ड थे, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हमने SMS और JNU अस्पताल भिजवाया। जो आसपास से पता किया तो कहा बताया कि उन्होंने की कोई किराएदार था और वो अभी किराया लिया था।
0: राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए भरे गए सभी 9 नामांकन पत्र सही पाए गए। द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए 3 प्रत्याशियों ने ये नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए थे, जिनकी विधानसभा में जांच की गई। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज डांगी और भाजपा की अलका सिंह तथा सतीश पूनिया के पर्चों की जाँच पर्यवेक्षक और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की मौजूदगी में की गई। जांच के साथ ही इनकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। कल नाम वापसी की आखिरी तारीख है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने कहा है कि प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ 19 विश्वविद्यालय थे, जहाँ दुनिया भर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। राज्यपाल आज लोक भवन में कर्नाटक के IIT धारवाड़ के विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए राज्यपाल ने राजस्थान के महापुरुषों और ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में बताया। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए श्री बागड़े ने कहा कि इसमें युवाओं को सभी क्षेत्र में अग्रणी बनाने पर जोर दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। बीकानेर के PBM अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में चिकित्सा विभाग ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जोधपुर मेडिकल कॉलेज से विशेषज्ञों की टीम जांच के लिए बीकानेर भेजी गई है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने आज जयपुर में बैठक कर अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। चिकित्सा मंत्री ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में श्री खींसर ने कहा कि बीकानेर का ये मामला कोटा प्रसूता प्रकरण जैसा नहीं है।
2: पहली चीज, ये चारों केसेस अलग अलग टाइम के हैं, एक टाइम नहीं है, अलग अलग कॉजेज है। 2 पेशेंट जब आए थे वो उनकी कंडीशन काफी गंभीर थी। गांव के अंदर क्या होता है, टाइमली नहीं लाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है, गर्मी पड़ रही है, डिहाइड्रेशन है, तो इसके अंदर क्या है कि एक पेशेंट थोड़ी सी गंभीर है, बाकी जो आपके 3 पेशेंट्स हैं वो अभी स्थिर है, उनका यूरिन आउटपुट भी सही है। ये कोटा वाला एपिसोड से कोई इसका लेना देना नहीं है, ना वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कोटा के अंदर।
0: गौरतलब है कि बीकानेर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने की सूचना है। वहीं गंभीर हालत वाली एक महिला को वेंटिलेटर पर रखा गया है। अस्पताल प्रशासन ने कारणों की जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ में आज वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने 800 से अधिक बुजुर्गों को ये उपकरण दिए। उन्होंने बताया कि इसके लिए पिछले साल नवम्बर महीने में विशेष शिविर लगाकर लाभार्थियों को चिन्हित किया गया था। इसके बाद उनकी जरूरत के आधार पर 85 लाख रुपए मूल्य के ये उपकरण तैयार कराए गए। देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में $468 अरब से बढ़कर $863 अरब तक पहुंच गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव साकेत कुमार ने आज जयपुर में एक कार्यशाला में ये जानकारी दी। केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित आउटरीच कार्यक्रम के तहत ये कार्यशाला रखी गई। श्री कुमार ने बताया कि इस अवधि में वस्तु और सेवा निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सेवा क्षेत्र के निर्यात में 9% से अधिक की

0: उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात में भी भारी उछाल देखने को मिला है। श्री कुमार ने विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से उपजी नई संभावनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में बेहतर अवसर मिल रहे हैं।
1: आज का ये आउटरीच कार्यक्रम भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे निर्यातक भारत के मुक्त व्यापार समझौतों और उनके माध्यम से सृजित हो रहे अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सके। उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौतों का ये सुनिश्चित करना है कि व्यवसायिक निर्यातक MSMEs और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स इनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर निर्यात बढ़ाएं, नए बाजारों तक पहुंच बनाएं और हमारी जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें भारत की स्थिति को मजबूत करें।
0: सरकारी ई मार्केट पैलेस जेम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि नागरिक केंद्रित सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। श्री कुमार ने कहा कि वर्ष 2016-17 में जेम में भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्योगों की संख्या लगभग 2300 थी, जो अब बढ़कर 12 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि जेम पर महिला स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या भी बढ़कर अब 2,16,000 से अधिक हो गई है। साथ ही महिला उद्यमियों की ओर से की जा रही खरीद का आंकड़ा 93,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ई फाइलों के निस्तारण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी को खत्म करने के लिए उन्होंने फाइल निस्तारण प्रक्रिया को और बेहतर तथा उत्तरदायी बनाने की बात कही। मुख्य सचिव आज विभिन्न समितियों के सचिवों की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने संपर्क पोर्टल की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण करने की बात कही। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज देश भर में कई आयोजन हुए। इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती है। साथ ही विस्तारित अभियान के तहत 18 और 27 तारीख को ज्यादा जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की विशेष ट्रैकिंग और निगरानी की जाती है। इस मौके पर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसका लाभ लिया। शिविरों में चिकित्सा अधिकारियों ने महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व और संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वीबीजी राम जी के तहत किसी भी राज्य के बजट प्रस्ताव में कोई कटौती नहीं की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार ने बीकानेर के PBM अस्पताल में प्रसूताओं की तबियत बिगड़ने के मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी और देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में 468 अरब डॉलर से बढ़कर 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख दिनेश श्रोत्रिय ने तैयार किया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की जिले भर में तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य कार्यक्रम राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर होगा। इसे लेकर जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने जिला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शिक्षा, पुलिस और चिकित्सा विभाग को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस बीच जिले भर में जगह जगह योगा डे काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इन कार्यक्रमों में नियमित योगाभ्यास कराकर फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के तहत मकानों का सूचीकरण और मकान गणना का काम जारी है। मौसम की परवाह किए बिना प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। चारभुजा तहसील क्षेत्र में दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे रूपनगर गांव में सर्वे दल 10 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा। इस दौरान 7 घंटे में 60 मकानों का सूचीकरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अपील के बाद से जिले में ईंधन बचाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने ईंधन बचाने के लिए

0: एक ही बस में सवार होकर दफ्तर तक का सफर तय किया। चारभुजा में आयोजित संध्या चौपाल में भी दोनों अधिकारी बस से ही गए। लोगों ने प्रशासन की इस पहल को सराहा है और प्रेरणा ली है। न्यायिक अधिकारियों ने भी पैदल चलने, साइकिल का उपयोग करने और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने की अपील की है। कांकरोली पुलिस थाना इंचार्ज सरोज बैरवा ने साइकिल पर शहर में गश्त की और ईंधन बचाने का संदेश दिया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले में बरसात का पानी इकट्ठा करने और पानी बचाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गई। बनास नदी और गणगौर घाट पर राजसमंद नगर पालिका की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। इसके अलावा सरकारी विभागों, गौशालाओं और जल संरचनाओं की साफ सफाई की गई। जल पूजन और कलश यात्रा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ा गया। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। ये अभियान विश्व पर्यावरण दिवस पर संपन्न हुआ और इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। अभियान के तहत मॉनसून सीजन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे और जिले में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके लिए लोगों को नर्सरियों से पौधे वितरित किए गए। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजसमंद में रन फॉर एनवायरमेंट मैराथन रखी गई। जिला कलेक्टर ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन शहर के विभिन्न मार्गों से होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पौधे लगाए गए और पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। सड़क सुरक्षा को लेकर जिले भर में विशेष सतर्कता देखी गई। जागरूकता अभियान चलाकर राजसमंद पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। इसके साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए। जिला पुलिस ने एक विशेष आदेश जारी कर पेट्रोल पंप संचालकों को कहा है कि बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाए। उपमुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पीने के पानी, स्वास्थ्य और बिजली आपूर्ति से जुड़े मुद्दों के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जिले के प्रवास पर रहीं। उन्होंने सांगठ कला गांव में 67 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर और कांकरोली के द्वारिकाधीश मंदिर में अधिक मास की शुरुआत के साथ ही विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। मंदिर में रोजाना भगवान का विशेष श्रृंगार और मनोरथ हो रहे हैं। श्रद्धालुओं को खास झांकियों के दर्शन कराए जा रहे हैं। फूल मंडली, जल विहार, रथ यात्रा और नौका विहार के दर्शनों को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ईद उल अजहा का पर्व भी पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। विभिन्न मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई और मुल्क में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी गई। राजसमंद जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो वीडीजी रामजी रातेत किनी राज्य रा बजट प्रस्ताव में कोई कटौती नहीं करी जी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 21 जून ने ओजू ली जावन वाली नीट यूजी परीक्षा री तैयारियां रोचा इजो लीनो। राज्य सरकार बीकानेर रा पीबीएम अस्पताल माए जापा वाली लुगाइयां री तबीयत बिगड़ बारा मामला माए रपट मांगी। और देशों दिसावर माए बिक्री लारला 12 साल माए 468 अरब डॉलर हूँ बधर 863 अरब डॉलर ताई पूगी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मनरेगा योजनाओं विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी माए बदलाव सारू केंद्र सरकार राज्य और केंद्र राज वाला प्रदेशों बाबत 95,692 करोड़ रुपया रा अंतरिम बजट रो प्रस्ताव किनो है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली माए राज्य और केंद्र राज वाला प्रदेशों रा ग्रामीण विकास मंत्रियों संग वर्चुअल मीटिंग माए ओ ऐलान किनो।

0: पाछक खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका श्री चौहान कहो कि राज्य रा बजट आवंटन माए कोई कमी नी करी ची है, बल्कि लारला साल री तुलना माए बजट 40% बधाई चियो है।
1: किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे, इसका कम हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही, पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से, तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
0: VBG राम जी कानून 1 जुलाई आखा देश में लागू फैला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA रा मुख्यालय रो दौरो कर 21 जून ने उजूली जावन वाली नीट UG प्रवेश परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लिनो। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका वे कहो कि परीक्षा साफ कोई सागे करावन और इनरी गोपनीयता बनाई रखन सारू सगला जरूरी जतन करया जा रहा है। शिक्षा मंत्री कहो कि इन दौरान आवन वाली अड़चना रो सामो करण सारू खुफिया तंत्र और केंद्रीय जांच ब्यूरो समेत सगला साइबर सुरक्षा संसाधन काम लिया जा रहा है।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात पर और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की DG और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, SP की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें NTA के DG स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेक राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: जयपुर रा खो नागोरियान हल्का माए पटाखा बनावन रा एक कारखाना माए लाई लाग जावनु 3 मजूरा री मौत वेगी और 5 मजूर घना दाज गया। जख्मी मजूरा ने जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है। रिहायशी हल्का माए गैर कानूनी तौर चल रहा ई कारखाना माए हादसारी बगत महिलावां और बच्चा समेत 8 जना मौजूद हा। लाई लाग्या पछे बैठे राखी जी गैस री टंकी फाट की। हादसा री जानकारी मिलता ही सिविल डिफेंस री टीम मौके पुगी और दमकल री मदद आग बुझाई ची। थाना अधिकारी ओम प्रकाश बतायो कि लाई लागण रा कारण री जांच करी जा रही है।
3: हमें सूचना मिली कि आग लगी हुई है, एक मकान में आग लगी है, तो हमने तुरंत मौके पे पहुंचे। मौके पहुंचकर यहाँ पे आसपास के लोगों की मदद लेकर के पानी के टैंकर लगा करके तुरंत आग बुझाने का काम किया और उसमें करीब 8 लोग इंजर्ड थे, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हमने SMS और JNU अस्पताल भिजवाया। जो आसपास से पता किया तो कहा बताया कि उन्होंने की कोई किराएदार था और वो अभी किराया लिया था।
0: प्रदेश और राज्यसभा री 3 सीटा माथे चुनाव सारू उम्मीदवार कानून दाखिल करी जिया सगला 9 नाम पाना आज विधानसभा माए करी जी जांच माए सही मिलिया। द्विवार्षिक चुनाव सारू राज्यों 3 उम्मीदवार पर्चा दाखिल की नाहा। आम आए 2 भाजपा रा और 1 कांग्रेस रो उम्मीदवार है। चुनाव अहलकार भारत भूषण शर्मा बतायो कि 3 उम्मीदवार कांग्रेस रा नीरज डांगी और भाजपा रा डॉक्टर अलका सिंह और डॉक्टर सतीश पूनिया रा पर्चा री जांच पर्यवेक्षक और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन री मौजूदगी माई कराई ची। जांच रा काम रो वीडियो ही बनाई चियो। नाम पाछा लेवन री काल आखिरी तारीख है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े कहो है कि जूना जमाना उई भारत भनाई लिखाई रो केंद्र रहो है। वे आज लोक भवन माए कर्नाटक माए धारवाड़ रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रा विद्यार्थियों सागे मुलाकात रे दौरान बोल रहा हा। एक भारत श्रेष्ठ भारत रा तेत विद्यार्थियों सागे मुलाकात रे दौरान राज्यपाल राजस्थान रा महापुरुषा और ऐतिहासिक स्मारका रो जिक्र कीनो। नवी शिक्षा नीति रो जिक्रो करता थका श्री बागड़े कहो कि इन माए नौजवाना ने हर हल्का माए अगाड़ी बनावण माथे जोर दियो चियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज भरतपुर और डीग जिला रा आला अहलकारा सागे मीटिंग कर वठे विकास रा कामा रे बारा माई चर्चा कीनी और जरूरी हुकम दीना। मुख्यमंत्री डीग जिला रा श्रीनाथ जी मिंदर माई जातरुआ सागे बातचीत कीनी और सुबिता ने बारा माई जानकारी लीनी। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण रा अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत मौजूद हा। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो।

0: बीकानेर रा पीबीएम सफाखाना माए ऑपरेशन नो भया जापा पाछा छह लुगाइया री तबियत खराब है जावन रा मामला माए चिकित्सा विभाग मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल उमरा पटमंगी है। इस आगे जोधपुर मेडिकल कॉलेज हुई जानकारा री टीम जांच सारू बीकानेर भेजी जी है। इन विचे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर आज जयपुर माए अहलकारा सागे मीटिंग कर मामला री जानकारी लीनी और अड़ा वाकया रोकण सारू सगला जरूरी जतन करन बाबत कहो। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कांक खींसर कहो के बीकानेर रो ओ मामलो कोटा माए लाडला दिनाभिया मामला सरीखो नी है।
1: पहली चीज, ये चारों केसेस अलग अलग टाइम के हैं, एक टाइम नहीं है, अलग अलग कॉजेज है। दो पेशेंट जब आए थे वो उनकी कंडीशन काफी गंभीर थी। गांव के अंदर क्या होता है, टाइमली नहीं लाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है, गर्मी पड़ रही है, डिहाइड्रेशन है, तो इसके अंदर क्या है कि एक पेशेंट थोड़ी सी गंभीर है, बाकी जो आपके तीन पेशेंट्स हैं वो अभी स्थिर है, उनका यूरिन आउटपुट भी सही है। ये कोटा वाला एपिसोड से कोई इसका लेना देना नहीं है, ना वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कोटा के अंदर।
0: ध्यान जोग है कि बीकानेर में ऑपरेशन उभिया जापा पछे छह लुगाइया री किडनी माथे असर पड़वारी जानकारी मिली है, जबकि घनी मंदी एक लुगाई ने वेंटिलेटर माथे रखी ची है। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय वयोश्री योजना रा तहत आज बुजुर्ग ने जिंदगी आसान बनावण में मददगार साजो सामान दिया चिया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत 832 बुजुर्ग ने ए उपकरण दीना। वे बतायो कई सारू लारला साल नवंबर महीना माए खास शिविर लगार पात्र लोगा ने पिछाण करी जी चिंपा छे वानी जरूरत रे मुताबिक 85 लाख रुपया मोल रा उपकरण तैयार कराई चिया। भारत रा सामान री दिसावर माए बिक्री लारला 12 साल माए $468 अरब उम्बधर $863 अरब ताई पूग की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय रा वाणिज्य विभाग माए संयुक्त सचिव साकेत कुमार आज जयपुर माए आ जानकारी दीनी। केंद्र माए एनडीए रा राज रा 12 साल पूरा फेवन रा सिलसिला माए राखी जी एक कार्यशाला माए श्री कुमार कहो के ई मियाद माए सेवा हलकाओं जुड़ी बिक्री माए 9% बत्ती बढ़ोतरी दर्ज करी जी। श्री कुमार न्यारा न्यारा देशा सागर करी जी आ मुक्त व्यापार करार उपजी नई संभावनावां रा बारा माए जानकारी दीनी। वे कहो के इनु भारत उन दिशावर माए सेवा और माल बेचन वाला ने बेहतर मौका मिल रहा है।
2: आज का ये आउटरीच कार्यक्रम भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे निर्यातक भारत के मुक्त व्यापार समझौतों और उनके माध्यम से सृजित हो रहे अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सके। उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौतों का यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसायिक निर्यातक एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स इनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर निर्यात बढ़ाएं, नए बाजारों तक पहुंच बनाएं और हमारी जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें भारत की स्थिति को मजबूत करें।
0: सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम रेजरिय खरीद बिक्री करण वाला सूक्ष्म लघु उद्यमारी तादाद साल 2016-17 रा करीब 2300 अब 12 लाख वेकी है। जेमरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार आज नई दिल्ली माए खबर नवीसा ने आ जानकारी दीनी। वे कहो कि जैम माथे महिलाओं रा मालिकाना हक वाला उद्यमारी तादाद ई बधर अब 2,16,000 ने पार कर की है और महिला उद्यमिया कान्यू खरीदी 93,000 करोड़ रुपया रा लेवल ने पार कर की है। और अब मौसम, प्रदेश माए तेज गर्मी और उमस रो असर बतकियो है। आज श्रीगंगानगर बीकानेर और जैसलमेर समेत कई ठोणा पारो 44 डिग्री सेल्सियस ने पार करक्यो। बाड़मेर चूरू कोटा जोधपुर और जयपुर में जोरदार गर्मी रही। इन बीच मौसम विभाग आज प्रदेश रा 7 जिला माए अंधड़ बरसात और 5 जिला माए लू बजन सारू चेतायो है। 11 जून राज्य रा कई हलका माए ओजू आंधी बारिश वेवन रा आसार है। अहमदाबाद माए राखी जी पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप माए राजस्थान पुलिस री सिपाही देवांशी शर्मा सीनियर बी हैंड बैलेंस होड़ री व्यक्तिगत श्रेणी माए सोना रो तमगो हासिल कीनो है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े वाने आ उपलब्धि हासिल करण सारू बधाई और शुभकामनावां दीनी। राज्यपाल मारा बधाई संदेश माए ई होड़ ने भारत री संस्कृति जुड़िया योग खेला ने दुनिया री स्वीकृति बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित किया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून ने विचार बतावेला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800

0: शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य मत है 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहा हो। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो VBG राम जीरा तेज किनी राज्य रा बजट प्रस्ताव माए कोई कटौती नहीं करी ची। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 21 जून न ओजूली जावन वाले नीट UG परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लीनो। राज्य सरकार बीकानेर रा PBM अस्पताल माए जापा वाले लुगाइया री तबियत बिगड़ बारा मामला माए रपट मांगी। हर देश हूँ दिसावर माए बिक्री लारला 12 साल माए $468 अरब उम्बैस हर $863 अरब तय होगी। ईसा की प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: इस समय अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी। हमारे प्रसारण FM बैंड 101.8 MHz पर उपलब्ध हैं। शाम के ठीक 7 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं ग्रामीण परिवारों का कार्यक्रम किसान वाणी।
2: आयोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान वाले ने सभी श्रोताओं ने लालजी भाई रहा घना घना राम राम। देखो किसान भाइयों के हमारा सरकार 12 वर्ष पूर्ण होना है, तो वो उपलक्ष्य में सरकार जो है किसान वास्ते की लाभ दिया की और फायदा दियो या की और वास्ते योजना चलाई पूरे बारे में आज आप बातचीत कर सौ सुनील कुमार जी शर्मा सु जो कि केवीके पोखरण सु पधारिया है। सबसे पहले तो आप बहुत बहुत स्वागत है।
7: नमस्कार सभी किसान भाइयों को नमस्कार।
6: तो देखो सरकार 12 वर्ष हुआ है, तो 12 वर्ष पूर्ण होने मत है जो को सरकार ने फसल बीमा के बारे में जो को भी अपन फायदा मिली हुए या किसानों ने फायदा मिली हुए थोड़ी पूरे बारे में जानकारी दो।
7: सबसे पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम। आज जो 12 वर्ष के लिए सबको शुभकामनाएं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आज 12 वर्ष पूरे हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि किसान इस योजना से संतुष्ट होंगे, क्योंकि ये जो योजना है उसके चलने के बाद में काफ़ी किसानों को राहत मिली है और जो विभिन्न अपने अप्रत्याशित जो लाभ होते हैं वो मिले हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि फसल बीमा के उद्देश्य क्या क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत अपने जो विभिन्न प्रकार के जो मौसम या अपने जलवायु के जो विभिन्न प्रकार के तरीके से नुकसान होना या अप्रत्याशित नुकसान हो जाना, खड़ी फसल खराब हो जाए, तो इस तरीके से जो भी फसल के नुकसान है उसके मुआवजे के लिए अपन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रजिस्टर कर सकते हैं। अपन इसमें

0: जैसे तेज हवा, तूफान है, ओलावृष्टि है, अपने साथ में है तेज आंधी है, तूफान है, और यदि खड़ी फसल के टाइम पे यदि बरसात आ गई तो पूरी खड़ी फसल खराब हो जाती है। इस तरीके से कई प्रकार के जोखिम इसमें शामिल किए गए हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसके पात्र कौन-कौन है। इसके पात्र सभी किसान होते हैं जो भी खेती करते हैं। अब इसमें दो अपन बात करें तो दो प्रकार के किसान अपने यहाँ पे बात करें तो होते हैं, जिसमें एक तो ऋण लेने वाले किसान और एक बिना ऋण वाले किसान। तो ऋण लेने वाले किसान होते हैं वो, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड जो अपनी स्कीम चल रही है उसमें केसीसी जो लेते हैं, तो केसीसी के तौर पे जो लोन लेते हैं तो उसमें बैंक को वे एक स्वीकृति प्रदान कर देते हैं कि भाई हर साल वो समय पे अपना हमारा जो बीमा है वो किया जाए। जैसे खरीफ का जो भी
1: जी
0: फल उनसे जस्ट पहले है, तो जैसे खरीफ का मौसम आने वाला है तो अगले महीने में बीमा चालू हो जाता है। इस टाइम मूंगफली का बीमा जैसे चालू करा सकते हैं किसान। और दूसरी चीज़ यह है कि रबी फसलों में जब शुरुआत होती है तो रबी के टाइम उसमें प्रीमियम काटा जाता है, तो केसीसी के थ्रू तो अपने आप ही बीमा कर देती है। यदि जब तक अपन लिख के नहीं देंगे किसान भाई कि हम बीमा कराना नहीं चाहते हैं बैंक मैनेजर को, या जहाँ भी अपन ने केसीसी ले रखी है तो उनको लिख के देना पड़ता है, तो वो जब जब तक अपने आप वो प्रीमियम काटते रहेंगे।
1: काटते रहते हैं।
0: यदि एक ऐसे किसान होते हैं जो ऋण नहीं ले रखा, तो उनको एक जो बैंक में फॉर्म है या फिर आप वेबसाइट में जाके और ई मित्र से भी फॉर्म भरा सकते हैं, यदि खुद कंप्यूटर वगैरह जानते हैं तो खुद भी उसमें बीमा कटा सकते हैं ऑनलाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं
1: मतलब जिसे
0: है।
1: केसीसी या क्या कहते हैं खाद बीज के लोन लेके रखे हैं उनका तो सरकार द्वारा
0: हाँ,
1: फॉर्म
0: जो
1: वगैरह भरा हो
0: केसीसी ले
1: जाता है
0: रखा है उनका तो बैंक अपने आप प्रीमियम
1: ना कर
0: काट लेता
1: देते।
0: है,
1: हाँ
0: जब तक वो उसमें लिख के नहीं देगा कि नहीं काटा
1: नहीं
0: जाए,
1: काटा जाए।
0: जब तक वो स्वीकृति नहीं देता है
1: हाँ
0: यदि, तो वो ऑटोमेटिक बैंक ये
1: ऑटोमेटिक
0: मानते हैं कि इसको स्वीकृति है,
1: स्वीकृति है।
0: वो ऑटोमेटिक बैंक देते हैं, वो अपने आप काट लेते हैं प्रीमियम जैसे ही प्रीमियम का टाइम आता है
1: हाँ
0: और वो काट लेते हैं। लेकिन जिन किसानों ने ऋण नहीं ले रखा है
1: नहीं ले
0: उनका
1: रखा।
0: कैसे कटेगा? तो
1: हाँ
0: ये सबसे बड़ी समस्या आती
1: समस्या
0: है। जब
1: रहती
0: हम
1: है।
0: फील्ड में जाते हैं तो किसान कहते हैं कि भाई हम कैसे बीमा कटवाएं, हम भी चाहते हैं कि इसमें पात्र बने, तो हम किसान भाइयों को ये कहते हैं कि यदि उनको, क्योंकि किसान भाई ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है तो
1: हाँ
0: वो ई मित्र पे जाके और आसानी से अपना कटवा सकते हैं।
1: कटवा सकते हैं।
0: दूसरा है, आप बैंक में जाके भी, जैसे गांव में रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक
1: ग्रामीण
0: है
1: बैंक है। हाँ
0: वहाँ पे उनका अकाउंट रहता है किसान भाइयों का, तो वहाँ जाके उनको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है।
1: तो
0: जैसे
1: किसान सम्मान निधि वाला पैसा उनके अकाउंट में आता है तो उनका अकाउंट तो
0: हाँ
1: होगा ही होगा।
0: अकाउंट होता है, तो उसमें उनको एक एप्लीकेशन ब्रांच मैनेजर को देनी पड़ती है कि भाई इसमें मैंने केसीसी नहीं ले रखी है, मैं इसे इस किसान हूँ, आपके यहाँ मेरा अकाउंट है, ये नंबर है, और मैं अब मैंने खरीफ फसलें में ये फसलें लगा रहा हूँ,
1: लगा रहा हूँ
0: तो जो भी अधिसूचित फसलें हैं उनमें उनके लिए मेरा प्रीमियम काटा जाए,
1: काटा जाए।
0: तो वो अपने आप जो भी अधिसूचित प्रीमियम में जो फसलें होती है
1: काट
0: उनमें प्रीमियम वो काट लेते हैं।
1: लेंगे।
0: तो ये एक है। दूसरा है, आप डायरेक्ट ई मित्र से भी जाके कटवा सकते हो, सीएससी सेंटर है जो भी है वहाँ से भी जाके वो डायरेक्ट अपना कटवा सकते हैं।
1: उसके लिए अपन क्या क्या लेके जाना पड़ेगा जो खसरा नंबर है
0: हाँ,
1: या
0: उसमें अपन आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आपको देखो जमाबंदी तो अनिवार्य है, जमाबंदी 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात यह है, क्योंकि आजकल 6 महीने से पुरानी जमाबंदी कहीं भी वैलिड नहीं करते हैं। तो जमाबंदी आप सीधे किसान भाई अपना अपना खाता ऐप पर जाके और जमाबंदी डाउनलोड कर सकते हैं, आजकल ई जमाबंदी के नाम से उसमें डाउनलोड हो जाती
1: हो
0: है,
1: जाती
0: तो
1: है
0: आजकल पटवारी के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं
1: नहीं
0: होती,
1: पड़ती
0: तो अपन डायरेक्ट वहाँ से अपना खाता ऐप पे जाके अपना जिला सेलेक्ट करना है,
1: जिला
0: उसमें अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है, गांव सेलेक्ट करना है और खसरा नंबर डालना है, नाम से भी हो जाती है, तो वहाँ जाके किसान भाई अपना कभी भी दिन,
1: निकाल सकते
0: हाँ
1: हैं।
0: कभी भी आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उसका अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ठीक
1: हाँ
0: है, बैंक की पासबुक,
1: पासबुक
0: ये और एक फोटो और साइन, और एक आपको फॉर्म जो बैंक
1: जो
0: से लो
1: देंगे
0: चाहे कहीं से
1: वो।
0: भी लो, वो फॉर्म
1: हाँ
0: बैंक से फॉर्म देंगे, और जो ई मित्र पे कोई फॉर्म की जरूरत नहीं है ऑनलाइन भरा जाएगा,
1: भरा जाएगा।
0: तो उसमें कुछ मान लो अपलोड वगैरह करें तो फोटो साइन की जरूरत पड़े तो वो उसको देने पड़ेंगे, ये चाहिए बस, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। बैंक की पासबुक जरूरी है और जमाबंदी, ये दो चीज़ें जरूरी है, और आधार कार्ड और जन आधार कार्ड।
1: लेकिन एक और समस्या आती है कि गिरदावरी जो मुरबी वाले किसान है तो उनकी गिरदावरी क्या ऑनलाइन निकल जाती है?
0: हाँ, उनकी गिरदावरी में दिक्कत आती है तो उनको पटवारी से लेना पड़ेगा,
1: लेना पड़ता
0: क्योंकि वो उनके पास, लेकिन उनके पास एक पासबुक बनी हुई है,
1: है। हाँ
0: मैंने देखा है कि एक वो
1: हाँ
0: पासबुक बना के
1: पासबुक रहती
0: रखते
1: है।
0: हैं,
1: हमें
0: तो उसकी फोटो में वो क्या कर सकते हैं कि पटवारी से जाके साइन करवाना है और डेट लिखवाना
1: डेट
0: है,
1: ऊपर
0: तो वो उस दिन की वैलिड
1: जो
0: हो जाती है।
1: डायरी रहती है
0: हाँ,
1: उनकी।
0: उस डायरी में फोटोकॉपी करा के उस पर पटवारी के साइन करवा सकते हैं, तो

0: उस डेट से वैलिड हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो पासबुक, मैंने हमारे भी बीज लेने आते हैं किसान, तो मैंने देखा है कि वो पासबुक से लेके आते हैं, तो वो उनके पास जब से वो उनमें उनके नाम रजिस्ट्री हुई है जब से उनके पास है, तो उसमें जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो मैंने देखा है वो पटवारी के साइन करके उसमें रख रखे हैं उन्होंने।
1: रखते हैं
0: जैसे लोग कहते हैं भाई 6 महीने
1: पुराने
0: पुरानी नहीं होनी थी, तो वो
1: चाहिए
0: 6 महीने तक उसको चला लेते हैं, फिर उनको आवश्यकता होती है तो उसकी
1: साइन
0: फोटोकॉपी निकाल के फिर उस पर साइन करवा लेते
1: करवा
0: हैं,
1: लेते हैं।
0: तो उसका भी निदान है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई समस्या नहीं हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात अपन बात करें कि भाई इसमें प्रीमियम की क्या दर रहती है, कैसे प्रीमियम कटेगा, तो उसमें किसान भाई बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, उनको समझ में नहीं आती कि 2% प्रीमियम, 1.5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम, उनके समझ में नहीं आती थी। तो मैं ये क्लियर रूप से किसानों को समझाना चाहूँगा कि जो प्रीमियम है, जैसे आपकी अधिसूचित फसल, यहाँ पे अपन बात करें इस टाइम मूंगफली है, मूंगफली बुआई चालू हो गई,
1: हाँ
0: तो मूंगफली पे उन्होंने तय कर रखा है कि भाई जैसे 1 हेक्टेयर है, तो 1 हेक्टेयर पे मुझे क्लियर नहीं है कि 1 हेक्टेयर पे जैसे मान लो वो दे रहे हैं 1 लाख रुपया, उदाहरण के तौर पे बता
1: उदाहरण
0: रहा
1: के
0: हूँ,
1: लिए। हाँ
0: तो उस 1 लाख का अभी बात करें तो जो कॉमर्शियल क्रॉप है ना उसका 5% है।
1: 5% है
0: कॉमर्शियल क्रॉप में अपने जैसे यहाँ जीरा है,
1: जीरा।
0: मूंगफली है, इन पे
1: हाँ
0: है 5%,
1: 5%
0: है ना। अब दूसरी बात करें अपन, जैसे
1: इसमें।
0: खरीफ की फसल है,
1: हाँ
0: खरीफ की फसल में जैसे बाजरा है, मूंग है, मोठ है, ये जो अधिसूचित फसलें हैं है ना बीमा में, तो उन पे खरीफ फसलों में टोटल जो राशि है ना जो आपको बीमित हो रही है,
1: बीमित हो रही
0: उस
1: है
0: बीमित राशि का 2% है
1: 2% है।
0: खरीफ वाली फसलों पे, खरीफ
1: हाँ
0: वाली फसलें जिनमें बरसाती जो फसल अपन
1: बरसाती
0: कहते
1: फसल
0: हैं,
1: होती है अभी
0: हाँ,
1: जो।
0: उनका प्रीमियम, टोटल प्रीमियम का 2% है, ठीक है। अब बात करते हैं रबी फसलों की, रबी फसलों में जैसे अपन गेहूं है, जौ है ना, सरसों है, तिल वाली फसलें हो चाहे
1: हाँ
0: दलहनी फसलें हो, चना हो सकता है, उनमें 1.5% है, अधिसूचित जो भी फसल है
1: हाँ
0: उनके बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम के रूप में काटा जाता है। अब जो कॉमर्शियल क्रॉप है वो चाहे रबी की हो चाहे खरीफ की हो, जैसे मूंगफली है, इसबगोल है, जीरा है, ये कॉमर्शियल क्रॉप है
1: कॉमर्शियल
0: ना, व्यावसायिक या व्यापारिक फसलें कह सकते
1: व्यवसाय
0: हैं, क्योंकि इनके रेट ज़्यादा मिलती है तो इनको एक व्यापारिक फसलों में कैटेगराइज किया गया है,
1: कहते हैं।
0: तो इन पे अपना 5% है। और इसके साथ में जो अपने फ्रूट्स हैं उनमें भी कुछ अधिसूचित है, उन पे भी 5% है, तो ये क्लियर किसानों को होना चाहिए। और इसी तरीके से वो प्रीमियम अपना बैंक अपने आप ही काट लेता है, उसमें अपन को कोई समस्या नहीं आती है,
1: नहीं आती
0: वो उसी रूप से काटता है। यदि खरीफ फसलें हैं तो वो ऑटोमेटिक 2% काटेगा, रबी फसलें तो 1.5% काटेगा, और जो कॉमर्शियल क्रॉप है तो 5% प्रीमियम काटेगा। अब एक चीज और होती है, किसानों को समस्या ये आती है कि कई बार क्या करते हैं बैंक वाले, या जो भी अपन बैंक वाले की बात करें, केसीसी
1: बैंक।
0: वालों को दिक्कत आएगी
1: हाँ
0: क्योंकि वो तो ऐसे भी भरते हैं, केसीसी वाले क्या करते हैं किसानों के साथ कई बार धोखाधड़ी करते हैं, ये हमारी चीज कई बार समझ में आई है। ये क्या करते हैं, जैसे कि प्रीमियम जब भरते हैं, अब जैसे इस टाइम जब प्रीमियम भरा जाएगा तो जैसे मूंगफली में ज्यादा मुआवजा मिलता है, तो ये क्या करेंगे, अधिसूचित फसल में मूंगफली भरते नहीं है,
1: भरते नहीं
0: उसका प्रीमियम नहीं काटते।
1: करते नहीं।
0: तो ये किसानों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप उस टाइम, मतलब ये हर चीज न्यूज में आती है आजकल कि भाई अब प्रीमियम कटना चालू, वो अपने आप ही आ जाता है न्यूज में, भाई
1: जाता है
0: 31 तारीख तक आप बीमा
1: अगर
0: राशि
1: करवा लेते
0: प्रीमियम
1: हैं।
0: कटवा दें, तो आपको उस लास्ट राशि पे जाके देखना है कि भाई बैंक में आप पूछो उसको कि भाई आपने कौन कौन सी फसल का प्रीमियम काटा है मेरा। ये किसानों को थोड़ा मैं सलाह दूंगा कि जागरूक रहें,
1: जागरूक रहे
0: क्योंकि बीमित जो कंपनियां हैं ये बैंक से सेटिंग कर लेती है, और फिर वो जो बीमा राशि, जो बीमा के जो अधिकारी होते हैं
1: अधिकारी।
0: वो क्या करते हैं कि उसमें जैसे मूंगफली का करेंगे नहीं, क्योंकि मूंगफली में इनमें नुकसान होने के चांस ज़्यादा होते
1: ज्यादा
0: हैं,
1: होते
0: है
1: हैं
0: ना, क्योंकि इनमें बीमारियां भी ज़्यादा आती है,
1: ज्यादा आती है।
0: तो वो बाजरे में कम है, फिर बाजरे में बीमित राशि का जो मिलेगा मुआवजा वो कम है,
1: कम है 2%
0: मूंगफली में
1: मिलेगा।
0: ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे मूंगफली को प्रीमियम नहीं काटेंगे। तो
1: अच्छा
0: मूंगफली, अब वो कहता है किसान बाद में, फिर मूंगफली लगा रखी है उसने 2 हेक्टेयर में मान लो, तो फिर किसान कहता है कि भाई अब वो फोन करेगा वहां, अब वो कंपनी वाले कहते हैं कि भाई आपने तो इसका प्रीमियम ही नहीं कटवाया, तो कैसे मुआवजा देंगे, आपने तो बाजरे का कटवा रखा है,
1: बाजरा
0: बाजरे का दे देंगे हम, तो वो किसानों को मैंने देखा है कि कई बार समस्या आती है। तो किसानों को जागरूक रहना चाहिए जब भी, अब जब लास्ट डेट आती है कि जैसे कई बार आता है भाई 31 जुलाई तक आप अपना प्रीमियम कटवा दें, है ना, तो वो क्या करते हैं उस टाइम किसान को वहां जाके और बैंक में उनको एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं अपन
1: लिख
0: बैंक
1: सकते हैं कि
0: मैनेजर
1: भैया
0: को, भाई आपके यहाँ मेरी केसीसी चल रही है,

0: बट जिनकी नहीं है वो तो कटवाना चाहते हैं, उसमें उनको तो ऑप्शन मिल जाता है, वो तो फिर अपने आप कटवा सकते हैं, वो तो ऑनलाइन कटवाते हैं या जैसा भी है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें उस वक्त जाके और वो पूछ सकते हैं उसको, मैनेजर को, भाई आपने मेरा कौन कौन सी इसका मेन फसल का काटा है नहीं काटा। उड़ो का तो वैसे काट
1: समझ
0: लेगा,
1: लेता हूँ।
0: ठीक है, उनको भी अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं। लेकिन वो मैं जैसे जीरा है तो जीरा का नहीं काटते प्रीमियम, यहाँ मैंने देखा है जीरा का प्रीमियम नहीं काटेंगे, क्योंकि जीरा फसल इसमें ब्लाइट आती है,
1: आती है।
0: ब्लाइट आते ही फसल खराब हो जाती है। जैसे ही मौसम खराब हुआ तो बीमा जीरा खराब हो जाता
1: खराब
0: है,
1: होता है
0: अब वो उसमें काटते नहीं है।
1: तो इसमें
0: फिर
1: किसानों
0: किसान को
1: को।
0: समस्या आती है कि भाई
1: हाँ
0: आपने प्रीमियम ही नहीं कटाया तो आपको मुआवजा कैसे मिलेगा। तो फिर वो पटवारी के इनके पीछे चक्कर काटता है, लेकिन कोई निष्कर्ष
1: कोई
0: नहीं
1: नहीं।
0: निकलता, क्योंकि वो पॉलिसी ऐसी बनी हुई है। तो मैं किसान भाइयों को ये जरूर जागरूक करना चाहूंगा कि जब भी लास्ट दिनांक आती है, ये आजकल सब न्यूज में ग्रुपों में भी हम कृषि विज्ञान केंद्र से या फिर अपने कृषि विभाग वाले अपने जो भी हैं सब डालते
1: सब
0: हैं,
1: डालते हैं।
0: न्यूज में आती है ये चीजें, हमने देखी है, तो उस पे ग्रुपों में भी किसान के जो ग्रुप है
1: हाँ
0: उनमें
1: ग्रुप
0: सब में आ
1: में
0: जाता है
1: आती
0: कि
1: है
0: भाई 31 जुलाई लास्ट डेट है ना, या उस टाइम 31 सितंबर लास्ट डेट
1: लास्ट डेट
0: है
1: आती है। हाँ
0: ना, तो उस टाइम आप अपना प्रीमियम कटवा दें। तो उस टाइम जाके एक बार बैंक में, क्योंकि गांव में उनके अकाउंट वगैरह रहते हैं, रीजनल रूरल बैंक है या थोड़ा आसपास होगा, तो वहां जाके बैंक मैनेजर से जरूर आप सलाह ले लें या फिर इस चीज को सुनिश्चित कर लें कि भाई आपने मेरा जैसे मेन फसलों का तो पूछो आप कम से कम
1: हाँ
0: किसान भाई, और चीजों का तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन
1: मेन
0: फसलें आप
1: फसल
0: ले रहे
1: है
0: हो, जिसमें मेहनत कर रहे हो, जिसमें
1: उनको
0: आपको मुआवजा चाहिए, ठीक है,
1: उनको।
0: जिसमें आप कुछ मेहनत ही नहीं कर, जैसे बाजरे अपन यहाँ बात करें तो
1: हाँ
0: वो मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो 12 में लगा देते हैं, उनको तो ऐसे ही जरूरत नहीं
1: जी
0: आती,
1: जी
0: उसका तो वो कर देते हैं वो, क्योंकि उनको भी टारगेट पूरे करने,
1: मेहनत
0: उसमें
1: करनी
0: बहुत
1: होती
0: कम
1: है।
0: पैसा मिलता है, उसमें 1 हेक्टेयर पे 40-50 हज़ार रुपये मिलता है, तो उसको देने में क्या जोर आएगा। मूंगफली में 1.5-2 लाख जाता है 1 हेक्टेयर का, तो 1.5-2 लाख में जोर आएगा
1: जो
0: ना,
1: रहेगा
0: इसलिए कंपनी को नुकसान होगा,
1: नुकसान होगा।
0: इसलिए वो जल्दी से जो कॉमर्शियल क्रॉप का प्रीमियम नहीं काटते हैं। तो किसान भाइयों को ये इसके लिए जागरूक रहना होगा। अपन और आगे बात करें तो इसमें कुछ समस्याएं और आती है जो हमने फील्ड में देखी है, कि इसमें क्या करते हैं कि जो मैं गवर्नमेंट को भी ये सलाह देना चाहूँगा कि इसकी थोड़ी पारदर्शिता करें। हम जाते हैं तो हमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर हमने प्रीमियम कटाया था, हमने शिकायत भी करी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इसमें मेन प्रॉब्लम यह है कि जो बीमा कंपनियां हैं ये प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है, इनका ना तो अपन कहीं शिकायत कर सकते
1: कर
0: हैं,
1: सकते हैं
0: ठीक है, इनके अधिकारी ये प्राइवेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं,
1: कॉन्ट्रैक्ट
0: वो
1: पे होते
0: चेंज
1: हैं,
0: होते रहते
1: चेंज
0: हैं,
1: होते रहते हैं।
0: ठीक है, तो ये क्या करते हैं वो पूरा प्रीमियम पता नहीं किससे करके कैसे क्या करते हैं, मुझे भी नहीं पता, किसान बताते हैं हमें। तो इसमें थोड़ी पारदर्शिता यदि वो करें, और इसका जो मेन वो काम है ना, जैसे ये जो कंपनियां हैं उसके साथ में अब ये पटवारी भी शामिल होते हैं, सब शामिल होते हैं,
1: शामिल होते हैं।
0: लेकिन फिर भी वो कंपनी वाले पता नहीं क्या करते हैं, किसानों की सबसे ज्यादा शिकायत आती है कि सर हमने पूरा काम हो गया था लेकिन आज तक हमें मुआवजा नहीं मिला।
1: मुआवजा नहीं मिला,
0: तो इसमें थोड़ा ऑनलाइन वगैरह होना चाहिए, स्टेटस वो देख सकें
1: देख
0: कि भाई
1: सके।
0: मैंने 24 घंटे में मैंने कर दिया, चलो 24 घंटे के अंदर इसमें वो करना होता है शिकायत।
1: शिकायत करनी
0: हाँ,
1: पड़ती
0: जैसे आपकी फसल खराब हुई, जैसे ओलावृष्टि हो गई, तो 24 घंटे में आपको शिकायत करनी पड़ती है, एक ऑनलाइन नंबर होता है वो आता है,
1: उसके
0: उसमें
1: फोटो और
0: मिल
1: सब खेत के
0: जाता है।
1: भेजे होते हैं
0: हाँ,
1: उसी समय।
0: तो उसमें वो ऑनलाइन है, ऐप पे भी जा सकते हो आप, PMFBY ऐप पे चले जाओ, डाउनलोड कर लो, उस पर पूरा उसमें आता रहता है, गांव वाँव सब आ जाता है उसमें, फोटो वोटो सब पूछता है, तो उसमें ऐसे कर दो, या फिर वो टोल फ्री नंबर होते हैं उस पर आप शिकायत कर दो। तो 24 घंटे बाद में फिर जैसे पटवारी है तो वो आएगा वहाँ, वो देखेगा कितना खराब हुआ, कितना 60, जैसे इसमें यह है कि भाई जैसे 40% से ऊपर खराब हुआ है तो ही मुआवजा मिलता है, 40% नीचे है तो नहीं मिलता, फिर वो एक रिपोर्ट बनाएंगे, वो आगे भेजेंगे, ठीक है, सब गाँव के सरपंच वगैरह भी रहते हैं, बीमा कंपनियों का एक अधिकारी आता है, अब वो उसके बाद में फिर घालमेल करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे और सब चीज़ें ऑनलाइन है ना, तो
1: इसको भी
0: इसका भी
1: ऑनलाइन
0: है ना,
1: करना
0: जैसे स्टेटस ऑनलाइन रहना चाहिए, वो देख सके ऑनलाइन कि भाई मेरा जो शिकायत है वो कहाँ चल रही है अभी, और उसमें क्या कारण हुआ कि इसके कारण रिजेक्ट किया गया,
1: रिजेक्ट किया गया।
0: जैसे और सब भी तो ऑनलाइन है अपन देख सकते हैं।
1: हाँ
0: तो इसमें थोड़ी पारदर्शिता यदि गवर्नमेंट करे तो किसानों के लिए अच्छा होगा, किसान के लिए भलाई होगी।
1: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आपने फसल बीमा के बारे में, प्रधानमंत्री फसल बीमा। इसके अंदर योजना बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ी समस्या चल रही है किसानों की, जो बरोबर उनको भुगतान नहीं मिलता है या उनको साथ कुछ गलत होता है। और अगला सवाल है कि भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये भी एक बहुत बड़ी बढ़िया योजना है कि इसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसान भी अपनी मिट्टी की पानी की जांच करवा सकते हैं। तो इस जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड

0: चलिए, उससे किसानों को क्या क्या फायदा हुआ?
1: देखिए, मृदा स्वास्थ्य जो स्कीम है 2015 में अपने राजस्थान से ही सूरतगढ़ से इसको इनोग्रेशन किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी द्वारा। तो ये स्कीम जब से किसानों के लिए, हालांकि पहले भी होती थी स्कीम, पहले भी चल रही थी।
0: चलते
1: हाँ, पहले भी चल रही थी स्कीम, लेकिन पहले क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि कॉलेज हैं, उनमें सीमित तौर पे प्रयोगशालाएं थी। ऐसे पर्टिकुलर जैसे आज आप देखोगे तो हर जिले में ऑफिस है, ऐसे नहीं
0: ऑफिस
1: थे,
0: है,
1: है
0: ऐसा नहीं था।
1: ना। पहले भी हम करते थे, हम बीएससी में थे, हमने भी किए हैं।
0: मतलब इन 12 सालों में कुछ ना
1: हाँ
0: कुछ सुधार हुआ है।
1: हाँ सुधार इन्होंने ये
0: हाँ,
1: किया कि भाई एक तो जो कृषि विभाग का ऑफिस है ना, वहाँ इन्होंने एक प्रयोगशाला
0: खोल दिए
1: खोल
0: हैं
1: दी है, उसमें एक एग्रीकल्चर रिसर्च जो ऑफिसर
0: वैज्ञानिक।
1: होता है
0: हाँ
1: वो एआरओ जो है वहाँ बैठा
0: हाँ
1: दिया, WRO AR O जो
0: हाँ
1: सोई मृदा वैज्ञानिक होगा उसको बैठा दिया वो, तो वो अपने जिले का हो गया। दूसरा है कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्रों पे जहाँ जहाँ अपने मृदा वैज्ञानिक हैं वहाँ वहाँ वो लैब है, वहाँ वहाँ करते हैं। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालयों में भी इन्होंने कर दिए। उसके अलावा इन्होंने क्या किया कि कुछ जैसे मान लो कि जॉब नहीं लग पाए, मृदा वैज्ञानिक हैं और जॉब नहीं लग पाए, तो वो एक बिजनेस के तौर पर भी अपना जैसे चार्ज करके वो एक अपनी प्रयोगशालाएं खोल खोल सकते हैं। तो ऐसी इन्होंने 2015 के बाद में ऐसी इन्होंने उसको लाइसेंसिंग वगैरह देके उन्होंने किया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने टारगेट्स दिए, भाई 5 करोड़ किसानों के साल के होने चाहिए, 10 करोड़ बनने चाहिए। तो उससे क्या है कि थोड़ा बूम आया उसमें। पहले कुछ जैसे मान लो 1 लाख में से 2 लाख, दो किसान 5 किसान करवा रहे हैं, अब 1 लाख में से 70,000 80,000
0: अच्छी
1: किसानों ने
0: बात
1: करवाया। तो 2015-16-17 में काफ़ी मिट्टी की जांच और
0: है।
1: हुई थी, वापस अब धीरे धीरे कम होता गया। अब किसान क्या, उस टाइम तो करवा लिए, लेकिन किसानों को ये नहीं पता कि ये 3 साल ही वैलिड है, क्योंकि 3 साल बाद फिर मिट्टी के
0: मिट्टी की
1: स्ट्रक्चर,
0: जरूरत पड़ती
1: मिट्टी की जो भी है संरचना है मिट्टी का, है ना, तो वो चेंज हो जाता है। तो वो क्या करे, वो पहले के ले लेके बैठे हैं अभी भी। तो हम जाते हैं फील्ड में तो हम कहते हैं कि भाई आप वापस कराओ, वो 5 साल पहले का कार्ड में दिखाते हैं, 2016 का,
0: सोलह
1: 17
0: का
1: का।
0: दिखाते हैं।
1: हमने कहा अब तो 2025 आ गई, तो ये समस्या है। तो फिर हम कहते भी हमें किसानों को भाई आप मिट्टी की जांच कराओ, पानी की जांच कराओ, और हम भी करवाते हैं हर साल। हम पहले तो हमारे खुद करते थे, लेकिन हम मृदा वैज्ञानिक की पोस्ट खाली है, तो हम यहाँ जैसलमेर जो अपना कृषि विभाग है उसकी जो प्रयोगशाला है वहीं हम करवाते हैं, और फिर किसानों को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे बड़ी समस्या किसानों को आती है कि मिट्टी का जो सैंपल लेते हैं ना, वो हम खूब बताते हैं किसानों को, खूब वीडियो हैं यूट्यूब पे हैं, लेकिन वो अभी भी सही तरीके
0: सही
1: से नहीं
0: तरह
1: है,
0: नहीं करते हैं।
1: वो खुद आलस कर जाते हैं थोड़ा बहुत। और फिर यहाँ तो इतना बड़ा एरिया है तो और भी ज़्यादा आलस कर जाते हैं। इसके लिए मैं फिर आपको मतलब एक शॉर्ट में, अपन ऐसा बहुत
0: बताऊंगा।
1: बड़ा टॉपिक है लेकिन शॉर्ट में मैं 2 मिनट में बता दूंगा कि जैसे मान लो आपका 1 बीघा का खेत है, उसमें तो चलो आप एक दो जगह से ले लो, लेकिन यहाँ क्या है कि जैसे 50 बीघा 60 बीघा जमीन है।
0: जो पुश्तैनी जमीन है,
1: हाँ,
0: बहुत बड़ी बड़ी
1: तो
0: जमीन
1: उसमें
0: है।
1: आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप जैसे 50 बीघा है ना, तो 25-25 बीघा के दो बना लो सैंपल, ठीक है, क्योंकि 50 बीघा में एक साथ नहीं लेना चाहिए सैंपल, मैं कभी सलाह नहीं दूंगा, है ना। और जैसे इस टाइम है ना, ये समय अच्छा है सैंपल लेने के लिए, बारिश में कभी सैंपल नहीं लेना चाहिए, गीला सैंपल कभी काम का नहीं होता, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता, उसमें जो अपन जो चाह रहे हैं ना पीएच ईसी वगैरह को भी सही नहीं आएगी।
0: सही नहीं
1: जैसे ये जो है ना इस टाइम ये अच्छा है। तीसरी चीज ये है कि जो मिट्टी है उसके ऊपर अपने कोई आवरण नहीं होना चाहिए, जैसे कोई कचरा वचरा है ना,
0: आएगा,
1: वीड वगैरह खरपतवार वगैरह वो नहीं होने चाहिए, वो अपन
0: उसको
1: को
0: साफ
1: हटा के, हाँ वो
0: करना
1: हटा के फिर लेना है, मेन चीज है ये, गीला नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद में अपन को क्या करना है, जैसे 50 बीघा जमीन है तो 25 दो सैंपल लो आप, सैंपल 1 सैंपल 2, खसरा नंबर एक ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो खसरा नंबर वो ही रह जाएगा,
0: हाँ।
1: लेकिन
0: उसका वन
1: सैंपल
0: टू
1: वन
0: या ए
1: सैंपल
0: बी
1: टू
0: जो भी
1: हाँ
0: उसके
1: ए
0: नाम दे
1: बी
0: दो।
1: किसान अपने कैक है कुछ भी डाल दो, है
0: नाम
1: ना।
0: दे दो।
1: फिर 25 बीघा में आपको एक सैंपल लेना है। अब 25 बीघा में आपको क्या करना है, आपके जैसे चारों कोनों से 4 सैंपल लेने हैं, 25 बीघा में भी फिर 4 कोनों पे चिन्ह
0: चार
1: करना है, फिर अंदर की तरफ 4 और एक बीच में,
0: बीच
1: मतलब
0: में
1: 8-10 जगह से आपको 25 बीघा में सैंपल लेना है।
0: सैंपल लेने हैं।
1: उसके लिए फिर किसान को क्या करना पड़ेगा, जैसे जो सूखी मिट्टी है उसके ऊपर कोई वीड वीड हो उसको हटा दो, फिर 15 से 20 सेंटीमीटर फसल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अपने यहाँ फसल वाली
0: फसल
1: भूमि है,
0: वाली है।
1: क्योंकि फसल की जड़ें अपने 15 से 20 सेंटीमीटर ही जाती है, तो नीचे अपन को कोई मतलब नहीं होता, है ना। तो 15 से 20 सेंटीमीटर का ही सैंपल लेना है, क्योंकि जो जड़ें हैं वो जड़े ही पोषक तत्व लेती है, पानी लेती है ना। तो 15 से 20 सेंटीमीटर अपन को वी अक्षर का उसमें काट लगाना है,
0: विशेप
1: हाँ वी शेप का, मतलब
0: का
1: एक साइड से अपन ने धरती में काट दिया और दूसरी साइड से काट दिया और पूरी मिट्टी निकाल ली,
0: निकाल ले
1: वी बन गया, है ना, वी आकार का
0: वी
1: गड्ढा
0: आकार
1: करना है
0: का
1: मिट्टी के अंदर,
0: मिट्टी के अंदर।
1: है ना, 15 से 20 सेंटीमीटर का।
0: ठीक है।
1: उसके बाद में जो वी आकार का गड्ढा किया, तो उसमें जो एक साइड जो गड्ढा हुआ है उसमें 1.5 सेंटीमीटर मोटी और इधर से भी 150 सेंटीमीटर

0: सेंटीमीटर मोटी थी, दो निकाल लेनी है, खुरपी को 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर लेना है, नीचे तक ले जाना है काट में, तो वो थोड़ी सी मिट्टी आएगी 100 ग्राम 150 ग्राम, उसको बाल्टी में डाल लो, बस वो एक सैंपल हो गया। फिर जैसे ही चारों कोणों से, तो वो आपके पास जब आप बाल्टी में डालोगे ना, अगर भी आता है इसके लिए, वो एक आता है उससे अपन सीधा ले, उससे गड्ढा करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही चला जाता है अंदर, उसको दबाते हैं और वो उसमें 100-150 ग्राम मिट्टी लेके आ जाता है, है ना। यदि वो है तो वो भी ज्यादा महंगा नहीं आता, 1000-2000 रुपए का आता है, वो भी किसान भाई ला सकते हैं, लेकिन चलो नहीं है तो अपना फावड़ी या उससे भी, फावड़ी से या अपने खुरपी वगैरह से भी कर सकते हैं। तो मुश्किल से जब आप लेओगे तो वो 3 या 4 किलो ही मिट्टी इकट्ठी होगी बाल्टी में, ठीक है, इतनी होगी, क्योंकि वो 100-100 ग्राम ही ले रहे हैं, डेढ़ मोटी प्रति तो ले रहे हैं,
1: अपने को 4-5 जगह से लेनी है,
0: तो अपने को ज्यादा 10-12 जगह से 25 बीघा की बता रहा हूँ, है ना, 25 बीघा से ज्यादा का सैंपल कोई काम का नहीं होता। और एक दूसरी चीज ये है कि सैंपल आपको हर जगह से लेना है, जैसे कुछ जगह क्या है, खेत में ढलान रहती है तो ढलान के नीचे से भी लाना है, ऊपर ऊपर वाले एरिया से भी लेना है, बीच से भी लेना है। उसका कारण ये है कि जैसे बरसात का पानी हुआ, ठीक है, तो अपन ने खाद दे रखा है, तो वो खाद पानी के साथ बह के नीचे वाले क्षेत्र में चला जाएगा, तो वहां का सैंपल तो अच्छा आना ही है। अपन ने वहां से ले लिया तो वहां वहां का जो अपने आसपास का क्षेत्र है, जैसे 100 मीटर 150 मीटर मान लो, तो वो तो अच्छा है, अब ऊपर का जो 75% खेत है वो खराब मिट्टी है, तो अपन को थोड़ा बहुत सैंपल वहां से भी लेना है, ऊपर से भी लेना है, नीचे से भी, ऊपर मतलब ऊबड़ खाबड़ सब जगह से लेना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 25 बीघा से ज्यादा का सैंपल नहीं लेना है ना। तो वो सैंपल लेके और फिर आपको एक जगह पॉलीथीन पे बिछा देना है, फिर भी उसमें काट करना है दो, है ना, दो काट करके, और आमने सामने के जो है उसमें से अपन को उसको आमने सामने की मिट्टी को मिला के, और मुश्किल से आप ज्यादा ज्यादा आधा किलो सैंपल ले लो, बस आधा किलो सैंपल, उसको अच्छे से मिक्स कर लो ताकि उस नीचे ऊपर सब जगह की मिट्टी मिक्स हो जाए। आधा किलो सैंपल से ज्यादा नहीं लेना है अपन को, आधा किलो मिट्टी बहुत है, इतनी काम आती है लैब में, प्रयोगशाला में, है ना, साफ सुथरी बढ़िया होनी चाहिए, कोई कंकर उनकर उनको हटा दो। उसके बाद में आपको एक साफ सुथरी पॉलीथीन में लेना है उसको, और पॉलीथीन के ऊपर आपका किसान का नाम, पिताजी का नाम, खसरा और सैंपल वन गांव का नाम, पूरा पता, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, और एक जियो लोकेशन, आजकल जो जियो लोकेशन आते हैं लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड, तो वो अपने आप ही जब आप फोटो लेते हो तो आजकल कई ऐप है ना, तो उसमें आ जाता है, तो उससे आपको जियो लोकेशन और लेना है, उसमें फिर एन और वो लिख देना है नीचे नीचे, और वो आपको अपने कृषि विज्ञान केंद्र में या जो भी प्रयोगशाला है अपने, जो अपने जिले पे भी है प्रयोगशाला, एक यहाँ जैसलमेर में भी जो अपना कृषि विभाग का ऑफिस है वहीं है प्रयोगशाला, तो वहाँ मृदा प्रयोगशाला में अपन जमा करा देंगे।
1: इसका कोई चार्ज है?
0: चार्ज 5 रुपये है, गवर्नमेंट वाले में कम है, अब यदि आप प्राइवेट में अच्छे में कराते हो तो उसमें 100-150 रुपये है ज़्यादा, उसमें भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, 150-200 रुपये इतना ही है, तो वहाँ भी आप करा सकते हैं, वहाँ भी अच्छी मशीन है उनके पास, प्राइवेट वालों के पास भी बढ़िया है, तो वहाँ भी करा सकते हैं। दूसरा अपन पानी का सैंपल भी बात करें, क्योंकि अब इसमें पानी के सैंपल में कुछ नहीं है, पानी के सैंपल में जैसे आप ट्यूबवेल चलाते हो तो ट्यूबवेल आधे घंटे तक चलाने के बाद में भरो, बस यही ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि आपने ट्यूबवेल चलाया भर लिया, क्योंकि वो उसमें जो कुछ जमा हो जाते हैं लवण वगैरह, तो वो पहले पहले बाहर आएंगे, है ना, कुछ अपन गिर भी जाता है अपने ट्यूबवेल में, है ना, तो वो फिर आधे घंटे बाद में पानी सही निकलेगा, तो उसको साफ बोतल में इकट्ठा करना है ना, ऐसी बोतल नहीं होनी चाहिए, कोई तेल की बोतल हो कुछ इस टाइप की, ताकि वो तेल के अवशेष उसमें नहीं आ जाए। आप ये जैसे सादा पानी बिस्लेरी की जो बोतल आती है उसको ले सकते हो, या कोई कांच की साफ बोतल हो जो सर्फ से अच्छी तरह धुली हुई हो उसको ले सकते हो, लेकिन ऐसे कोई तेल वेल की बोतल अपने घर की कोई वो, क्योंकि वो फिर सही नहीं आएगा सैंपल, उसमें ECPH ज़्यादा कम हो सकता है ना। तो ये है, अब अपन कार्ड की बात करें तो सभी किसान भाइयों को मैं एक चीज़ और बता दूँ लास्ट में, कि कार्ड की बात करें तो जैसे कार्ड में अपना ECPH है, उसमें कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, ये सब चीज़ें आती है ना, तो वो अच्छे से कार्ड को देख के, और फिर उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि भाई ये चीज़ कितनी मॉडरेट है ना, तो आपको मॉडरेट रेंज है या कम ज़्यादा रेंज है, उसके हिसाब से आप जो जो फसलें हैं या जो भी चीज़ लेना चाहें वो आप ले सकते हैं।
1: तो जी आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, और मैं आप आज कार्यक्रम और समापन समय पूर्व हो रहे, और भाई लोग सीख और कर्जे, राम राम
0: सभी किसान भाई को, राम राम।

0: के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी ग्रामीण परिवार सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। प्रसारण हो रहा था रेडियो गोल्डन सिटी से। शाम के ठीक 7:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बांसुरी वादन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत बांसुरी वादन और उसके बाद सारंगी वादन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम रेडियो गोल्डन सिटी से बोल रहे हैं, रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, उमराव जान फिल्म के तलत अजीज की गाई इस गजल के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम रेडियो गोल्डन सिटी से बोल रहे हैं, रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उधास की गाई चंद चुनिंदा गजलें। तो आइए लुत्फ लेते हैं पहली गजल का।

0: मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि MT मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक, हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: The amount of time we have spent,
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, LNG, LPG तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
2: Actually, the prime national goals of the moment.
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या COVID-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष की शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये तो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात पर और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एमसी की डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
6: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
5: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
7: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रहता हूँ।
5: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: हर उड़ान से पहले एक फैसला, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,30,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses

इस समय अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी। हमारे प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध हैं। श्रोताओं, रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम रेडियो गोल्डन सिटी से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम रेडियो गोल्डन सिटी से। हमारे प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं श्रामी गजल कार्यक्रम।

श्रोताओं अशोक खोसला की गाई इस गजल के साथ ही अब आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम रेडियो गोल्डन सिटी से बोल रहे हैं, रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपके लिए चुना है नूर जहां की आवाज में।

आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए। आपको हमारी कसम लौट आई, देखिए वो काली काली बदलिया की खटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक बिजली।

आपको हमारी कसम लौट लाई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट लाई।

तू हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाई। आपको हमारी कसम लौट आई,

आपको हमारी कसम लौट आई, बेतरार करके हमें यूं न जाइए। आपको हमारी कसम लौट आई, बेतरार करके हमें यूं न जाइए। आपको हमारी कसम लौट आई।

उसने बुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उस

आँख बचाई होगी। उसने घबरा के नजर लाख बचाई।

तस्वीर हटाई होगी मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी। है हर तरफ मुझको तड़पता पाया, मजबूर मुझे उसने बुला।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम रेडियो गोल्डन सिटी से बोल रहे हैं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी में होंगे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। ठीक 11 बजे से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात पर और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया, आज जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज पर रात्रि के 11:05 हुए। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। कल सवेरे 5:55 से आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।
4: In that several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human right abuses.
5: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are 7 reports of police brutality in Pakistan after Kashmir, in which 7 people have been killed. There are 7 more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
4: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tension